FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आज दिनांक 10 जून 2026, दिन बुधवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि।

आकाशवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं का मैं जय सूर्यवंशी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए श्रोताओं, सुबह की शुरुआत करते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम भक्ति धारा से। लीजिए, प्रस्तुत है ये भक्तिमय रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। चलिए सुनते हैं नरेंद्र चंचल की आवाज में ये भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना भानुमति की आवाज में ये भक्ति गीत। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति धारा यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय घड़ी में 6:30 बजने को है और समय हो चला है कार्यक्रम चिंतन का। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सामान्यतः 50 वर्ष के बाद व्यक्ति में वृद्धावस्था के लक्षण उभरने लगते हैं, क्योंकि इस आयु में शारीरिक क्षमताओं, मसलन पाचन क्रिया का कमजोर होना, हड्डियों में लचकपन कम होकर उनमें क्षरण होना और आंख, कान आदि इंद्रियों की कार्य क्षमता भी कम होने लगती है। शारीरिक और मानसिक बदलावों के चलते व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और नीरसता प्रारंभ हो जाती है। अक्सर लोग वृद्धावस्था के दस्तक देते ही घबराने लगते हैं। उन्हें एक अजीब सा भय और बेचैनी घेर लेती है, जबकि वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो जीवन का एक आवश्यक पड़ाव है, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति की मानसिक चेतना से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक उसी प्रकार यदि आयु के इस पड़ाव में भी व्यक्ति संयमित जीवन शैली अपनाकर पूरे जोश के साथ खुद को मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखे, तो वृद्धावस्था ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी बीमारियों पर भी विजयश्री प्राप्त करते हैं। वहीं निराशा में डूबे कुंठा के शिकार युवाओं को 25-30 साल की आयु के आसपास ही थका हुआ और उदासीन जीवन जीते हुए देखा जा सकता है। वर्तमान आपाधापी भरे युग में आज व्यक्ति की औसत आयु में भारी गिरावट आई है। शतायु होना किसी विशिष्ट उपलब्धि से कम नहीं है। ऐसे जिंदा दिल, उत्साही शतायु वृद्ध जन हमारे लिए प्रेरक का काम कर सकते हैं। उनके आहार विहार से व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये अक्सर देखने में आता है कि नौकरी अथवा व्यापार आदि से सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की दिनचर्या में भी परिवर्तन आ जाता है, जिससे उन्हें बीमारियां भी घेरने लगती हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति कार्य मुक्त होने के बाद भी स्वयं को अन्य कार्यों में व्यस्त रखते हुए अपनी दिनचर्या को पूर्ववत बनाए रखते हैं, वे हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। इसलिए वृद्धावस्था के बाद शारीरिक काम क्षमता में गिरावट आने लगती है। ये सोचकर निष्क्रिय होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी दिनचर्या में योग व्यायाम को नियमित रूप से शामिल करने के अलावा संतुलित खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति में विवेकशीलता, कर्मशीलता और आत्मिक संतोष की त्रिवेणी का संगम हो, उसके पास वृद्धावस्था फटक ही नहीं सकती, क्योंकि वृद्धावस्था के तार मन की आंतरिक स्थिति से सीधे जुड़े रहते हैं। वृद्धावस्था आयु का वो पड़ाव है जहाँ तमाम संघर्षों के बाद व्यक्ति पहुंचता है और अनुभवों की आंच में तप कर कुंदन सा निखर उठता है। उसके पास अनुभवों की जो अकूत दौलत संग्रहित रहती है, उसका लाभ परिवार के सदस्यों को मिलता है। इसलिए आयु के इस पड़ाव में व्यक्ति अपनी जीवनचर्या को संयमित करके चलेगा तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से स्वस्थ बना रहेगा। जब तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे तो रचनात्मक कार्यों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। परिणाम स्वरूप जीवन के अंतिम पल को भी पूरी उमंग के साथ जी पाना संभव हो सकेगा। कहा भी जाता है कि वृद्धावस्था जीवन का वो किनारा है जहाँ व्यक्ति समस्त संघर्षों और तूफानों को चीर कर पहुंचता है और स्वयं को अधिक शांत, सुखी, समाज के लिए अधिक उपयोगी बना सकता है। इसलिए वृद्धावस्था को बोझ न समझकर पूरे उत्साह और उमंग के साथ जिएं।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाड़ी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान की जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉ. सुरेंद्र परहाते, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल।

इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्या और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 2347222 या 2319444 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर 2347222 या 2319444 पर फोन कर सकते हैं। बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और समय हो चला है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान का। तो चलिए आपको ले चलते हैं श्री रामचरित मानस गान की ओर, जिसमें आज के कलाकार हैं सुरेश वाडकर, श्रीकांत परगावकर और साथी।

जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिन्हें जानकी तथा महादेव ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, आज मुझे उन्हीं चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए विभीषण समुद्र के इस पार आते हैं, जिधर श्री राम की वानर सेना के शिविर लगे हुए हैं। वानर समूह ने उन्हें देखा तो शंका हुई, शत्रु का कोई खास दूत उनके बीच आ पहुंचा है। विभीषण को श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्रीकांत परगावकर, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज में श्री रामचरित मानस गान। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। चलिए श्रोताओं, आपको ले चलते हैं कार्यक्रम लोकरंजनी की ओर, जिसमें आज के कलाकार हैं प्रकाश सुजालपुरकर और साथी। तो सुनते हैं ये लोकगीत।

श्रोताओं लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक रंजनी यही संपन्न होता है। इस समय घड़ी में 7 बजने को है और समय हो चला है हिंदी में समाचार का, जो प्रसारित किए जाएंगे दिल्ली केंद्र से। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे

0: फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवा दें। अब से थोड़ी देर में अर्थात 7:10 पर भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं। 7:20 पर क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से प्रसारित किया जाएगा। 7:50 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं समाचार प्रभात, और 8:15 पर दिल्ली केंद्र से ही आप सुन सकते हैं मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 9 से 10 बजे तक आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुन सकते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को। 10 बजे भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी, और 10:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुबह 10:10 पर प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज की बात का विषय होगा विविध संस्कृतियों में महिला की भूमिका, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। हमारी बात सखियों के साथ, कुछ फिल्मी गीत और कल के आकर्षण। 11:00 से 2:10 तक आप सुन सकते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 2:10 पर भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, और 2:15 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुन सकते हैं आप। 2:30 से 5:30 तक मुंबई केंद्र से विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 पर युवा भाइयों का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है, वसुंधरा में बारिश के पानी को बचाने का महत्व। इनसे मिलिए में आईटीआई कौशल रोजगार और स्वरोजगार की ओर एक मजबूत कदम, श्री शुभम वानखेड़े प्रचारी गवर्नमेंट आईटीआई बैतूल से चर्चा। शाम 6:05 पर कार्यक्रम गोधुली, जिसमें आज के कलाकार होंगे अनूप जलोटा। 6:30 पर फिल्म संगीत। 6:50 पर कार्यक्रम सबरस। 7:10 पर भोपाल केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार। 7:20 पर कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज की बात का विषय होगा अपने गांव की लोक कला को संजोए रखें, कुछ लोकगीत। सामयिक कृषि चर्चा में रजनीगंधा, सुगंधित पुष्प और किसानों की नगद आय का साधन। भेंटवार्ता, श्रृंखला बातें खेती किसानी की, बाजार भाव और मौसम की जानकारी। रात 8 बजे कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ। 8:30 पर साहित्य सरिता, जिसमें बैतूल के जाने माने कवि जगदीश धुर्वे जी से श्री प्रवीण चौरे जी की बातचीत। 8:45 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं समाचार संध्या। 9:00 से 10:00 तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले सकते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का। 10:00 कार्यक्रम मेरी पसंद, और 10:25 पर सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 11:10 पर हमारी आज की सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। श्रोताओं, इस समय

घड़ी में 7:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। विश्व के नेताओं ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को हराया। अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत 12 से 18 जून 2026 की अवधि में जिले के प्रत्येक विकासखंड नगरीय निकाय मुख्यालयों पर जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तेलंगाना की अदालत ने आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भाजपा की शिकायत पर यह कार्यवाही राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी ने की है। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जानकारी छिपाई गई थी, यह एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आपके कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के इस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की बैठक भी होगी। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और

0: सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों तथा सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने फर्जी खातों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय, पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा और वसूली तंत्र, डिजिटल संचार प्लेटफार्मों का बेहतर प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली में अधिक जवाबदेही, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी सुझाव दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: देखिए बात समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8-0 से हराया। रंगीरी बंबोला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 279 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से होगा। सभी मैच बंबोला में खेले जाएंगे और फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर की शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर में 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी जिले में संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की EKYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शिवपुरी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 साल पूरे होने के अवसर पर 1 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आगर मालवा जिले के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। देने के उद्देश्य से 12 से 18 जून तक विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित हमारे शिक्षक ऐप प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर भेजा जा सकता है। नमस्कार।

101.1 MHz पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, इस समय घड़ी में 7:20 हुए हैं और समय हो चला है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से अपने मेजबान जया के साथ। कभी कभी प्यार में शिकायत भी होती है, मनुहार भी होती है और एक मीठी सी चुनौती भी। दिल कहता है कि चाहे आप कहीं भी चले जाएं, हमारी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। नजर से दूर होकर भी भुलाए नहीं जाते, दिल में बसने वाले कभी मिटाए नहीं जाते। रास्ते चाहे बदल जाए जिंदगी के, मगर कुछ रिश्ते उम्र भर भुलाए नहीं जाते। दोस्तों, आज का गीत भी कुछ ऐसी ही मीठी अदा और प्यार भरे अंदाज को बयां करता है। यह सदाबहार गीत 1965 की फिल्म मेरे सनम का है, जिसे आशा भोसले जी ने अपने दिलकश आवाज से अमर बना दिया है। संगीत है ओपी नैयर का और गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। तो आइए सुनते हैं प्यार भरी शरारत और दिलकश अंदाज से सजा हुआ ये खूबसूरत नगमा।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, इस गीत की मधुर धुन और आशा जी की जादुई आवाज आज भी दिलों को उसी तरह छूती है जैसे वर्षों पहले छुआ करती थी। जहां भी जाइएगा यादों का कारवां साथ होगा, हर मुस्कान में किसी अपने का एहसास होगा। मोहब्बत की यही तो सबसे हसीन रवायत है, दिल से निकली दुआओं का हमेशा साथ होगा। इसी खूबसूरत एहसास के साथ बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर। श्रोताओं, प्रेम जब अपने सबसे खूबसूरत रंग में होता है तो हर मौसम सुहाना लगने लगता है, हर वादी जन्नत सी दिखाई देती है और हर हवा का झोंका किसी प्रिय की खुशबू लेकर आता है। ऐसे ही रोमानी एहसासों को समेटे हुए है हमारा अगला गीत। हुस्न की वादियों में जब प्यार की बहार आती है, दिल की हर धड़कन कोई मीठा तराना गाती है। नजरों से नजरें मिले तो वक्त ठहर जाता है, मोहब्बत की दुनिया में हर शाम सुहानी हो जाती है। दोस्तों, प्यार खूबसूरती और दिलकश नजारों से सजा यह गीत हमें उन सुनहरे दिनों की याद दिलाता है जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे। तो आइए प्यार और मधुरता के इन रंगों में डूबते हैं और सुनते हैं यह खूबसूरत नगमा।

वाह क्या खूबसूरत गीत था श्रोताओं। संगीत की मधुर लहरों और शब्दों की मिठास ने मानो दिल को किसी हसीन वादी की ओर सैर करा दी हो। फूलों की खुशबू हवाओं का पैगाम रहे, दिल में हमेशा प्यार का नाम रहे, जिंदगी की हर राह यूं ही महकती रहे और गीतों का ये सुरीला सफर तमाम रहे। तो चले श्रोताओं अब बढ़ते हैं अपने अगले मन भावन गीत की ओर। बने रहिए हमारे साथ यादों के झरोके से में। श्रोताओं प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि विश्वास और वादों का खूबसूरत रिश्ता भी है। जब दो दिल एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं तो जिंदगी की राहें और भी सुहानी हो जाती हैं। ऐसे ही मीठे एहसासों से सजा है हमारा अगला गीत। वादा तो वही जो लफ्जों में निभाया जाए, वादा वो है जो हर हाल में निभाया जाए। मोहब्बत की असली पहचान तो तब होती है जब दूर रहकर भी रिश्ता दिल से निभाया जाए। दोस्तों 1972 की फिल्म राजा जानी का यह सदाबहार गीत प्रेम भरोसे और साथ निभाने में के खूबसूरत जज्बातों को बयां करता है। राजा जानी में फिल्माया गया यह गीत आज भी प्रेमियों के दिल को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में यह प्यार भरा नगमा।

श्रोताओ, सचमुच यह गीत सुनकर दिल में प्यार, विश्वास और अपनापन एक साथ जाग उठता है। मधुर संगीत और भावपूर्ण बोल इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। रिश्तों की डोर विश्वास से बंधी रहे, हर वादा मोहब्बत की खुशबू से सजी रहे, मिले चाहे कितनी भी दूरियां राहों में, दिलों की ये नजदीकियां यूं ही बनी रहे। इसी खूबसूरत एहसासों के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सुरीले गीत की ओर और सुनते रहे कार्यक्रम यादों के झरोके से। श्रोताओं, पुराने फिल्मी गीतों की बात ही कुछ और होती है, उनमें मस्ती भी होती है, सादगी भी और दिल को छू लेने वाली मधुरता भी। आज का अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है जो अपनी चुलबुली अदाओं और प्यारे बोलों के कारण दशकों से श्रोताओं की

पसंद बना हुआ है। मुस्कुराहटों से महफिल सज जाती है, प्यार भरी बातों से दुनिया खिल जाती है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिंदगी में जिन्हें सुनकर हर याद फिर से जाग जाती है। दोस्तों, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसा सदाबहार नगमा जिसमें है प्यार की मिठास, मस्ती का रंग और पुराने दौर की खूबसूरत सादगी। यह गीत सुनते ही बरबस ओठों पर मुस्कान आ जाती है और दिल झूम उठता है। तो आइए यादों के सुनहरे सफर में चलते हैं और सुनते हैं यह दिलकश गीत।

0: श्रोताओं, क्या शानदार गीत था। पुराने गीत के पुराने दौर के संगीत की यही तो खासियत है कि वह हर उम्र के श्रोताओं के दिलों को छू जाता है। इस गीत की चंचल धुन और प्यारे बोल आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने उस जमाने में लगा करते थे। गीतों की महफिल यूं ही सस्ती रहे, यादों की खूबसूरत खुशबू दिलों में बसती रहे। पुराने नगमों का यह सुनहरा कारवा हर दिल को यूं ही गुनगुनाने पे मजबूर करता रहे। श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम का समापन होता है और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों के झरोके से आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और समय हो चला है कार्यक्रम सुबह सवेरे का, तो चलिए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे की ओर।
1: सुबह सवेरे

0: सुबह सवेरे कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का मैं जय सूर्यवंशी स्वागत करती हूं। श्रोताओं, सबसे पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसानवाड़ी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान की जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेंद्र परहाते, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से रात 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 2347222 या 2319444 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 11 जून 2026 दिन गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर 2347222 या 2319444 पर फोन कर सकते हैं। बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। आइए श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको ये संदेश।
1: आपके व्हाट्सएप संदेशों और गीतों पर केंद्रित फरमाइशी प्रोग्राम आपके संदेश आपके गीत सुनिए हर शुक्रवार रात 8 बजे से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722।
2: आकाशवाणी बैतूल पर दे विज्ञापन और पाएं अपने उत्पाद या सेवाओं का अभिवादन।
3: जन्मदिन, रिटायरमेंट, शादी की सालगिरह या हो कोई शैक्षिक उपलब्धि या किसी दिन विशेष की देना हो बधाई, तो आकाशवाणी बैतूल है ना भाई।
2: ये बात ना जाना भूल कि विज्ञापनों के लिए आना आकाशवाणी बैतूल।
3: अपने विज्ञापन प्रायोजन या प्रचार प्रसार के लिए हमसे संपर्क करें और पाएं विज्ञापनों की डायरेक्ट बुकिंग पर आकर्षक छूट और बोनस विज्ञापन।

0: विज्ञापन दरें हैं बहुत ही कम और प्रचार भी ऑन बैतूल FM।
1: तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें कार्यक्रम अनुभाग आकाशवाणी बैतूल कॉलेज रोड पर।

0: हमारे संपर्क क्रमांक है 07141234722 और मोबाइल नंबर है 9755553676।
1: श्रोताओं, संदेश के बाद आइए सुनवाते हैं आपको ये देश गान।

0: श्रोताओं, इसी देश गान के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे यही संपन्न होता है।
1: सुबह सवेरे
0: एक सौ 3.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय घड़ी में 8 बजने को है। समय हो चला है समाचार का, जो प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो तब तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति है। अनुपम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
8: मेन यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
7: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर

0: बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।

0: के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमानाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र

0: की बात कल हो ही गई है, तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
1: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे।
0: जी
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
0: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
1: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की।
0: जी
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
0: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
0: जी
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
0: जी बताती हूँ श्रोताओ, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
0: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
0: जी
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
0: जी
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की,
0: जी
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
0: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओ, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती हैं।
0: जी
1: फिर क्या होता है विमलेश जी?
0: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
0: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
0: जी
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को जेवेना कहते हैं।
0: जी
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
0: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है।
1: जो थोड़ी हल्की होती है, ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
0: जी
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
0: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: इथोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-5559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकड़ी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर यह अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे,
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
1: अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो चलो।
1: एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता। नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं।

0: आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
1: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा
0: जी।
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ
0: जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी?
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए, कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग।

0: मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग।
0: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
1: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
0: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: है। हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
0: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
0: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
0: अच्छा,
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
0: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना? यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
0: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथुवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिरामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था।

0: लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।
1: मलयत्तर और करडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
2: अच्छी।
1: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
3: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी।
1: भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
1: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यही से करते हैं, पेरियार से।
0: और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 9 बजने को है और समय हो चला है विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का, जो प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। अंग्रेजी में कहते हैं, इस फिल्म का गाना शान की आवाज में, गीत को लिखा योगेश ने, संगीत है प्रवीण कुमार का।

दोस्तों, आज सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। प्रतिवर्ष 10 जून को यह दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, वैश्विक एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न सभ्यताओं की विविधता के सम्मान, समान संवाद और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बातचीत के महत्व को उजागर करता है और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत हैं और दुनिया में शांति व साझा विकास बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गाना राज रिबूट। इस फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग का लिखा हुआ गाना, जीत गांगुली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमेश रेशमिया, शान कुणाल गांजावाला और अमृता काग की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना। हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम है अपने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शब्द सूरत तो आप जानते हैं, एन फैंसी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलान, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बालों की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है। जॉनी क्यों जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है। जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है। मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर ठोकर खाया।

0: मोहब्बत मर नहीं सकती।
1: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
2: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन से बंबई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बंबई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद जब मेरे कॉलेज की छुट्टी में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंग रूप। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थी। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डबल्स मास्टर विट्ठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम अज कम उमा शशि। अरे जमाने, कहानी किसी सीन के रहस्य चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देख लो बताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था। किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीत कर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें ये पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में दल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जनता और देखकर मैंने नाटक को जारी रखते हुए आवाज को पुरदर्द बनाकर आगाशे साहब के नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे भीम हवा उठ अपने शहीद अदा को देख, बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे, क्योंकि रिफ्लेक्टर की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
3: चंगेज खान के शेर सिपाही आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगोल फॉर्म में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुकद्दस राशि का कसम खाकर इंतजार करो ताकि हम चंगेज को दुनिया का फात्या देखें, तुम्हारे शम्मन की याद भी पूरी हो।
1: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
2: दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक ने जेलर और जयराज के स्वामी ने याकूब भाई की कंजूस मक्खी चूस बात के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता बाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरगिस मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जयत्रीर और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारोबार कर रहा हूँ।
1: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
2: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बुब्बो खुर्शीद शांता के मुकाबले में कर चुका हूँ। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने की कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूँ तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो। वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी है भाई। तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
4: मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी?
5: पता नहीं, चिंता खराब कर दिया। साफ कह रहे हो
4: मेरी बेटी कहाँ?
5: बैठे कौन सा बैठे?
4: उस राज्य से तुम उठा कर ले गए थे।
5: हमें कौन सा नहीं
4: याद करो, प्लीज याद करो।
5: चलो जाना इसी कन्नी को। ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
4: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
5: रॉबर्ट सेठ, तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ और तुम मेरे कदमों में।
4: मुझे सिर्फ इतना बुझा दो मेरी बेटी कहाँ है।
5: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पंडित ने बुलाए भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
4: मुझे एक रोज से मिलने दो प्लीज।
5: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
2: गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्रनाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लगाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहाँ तक कि मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस एम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नारायक बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खानून ललिता बाई का, और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, हा याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत सॉन्ग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओके डार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना है भाई होशियार रहना। बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों पानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस पटकाया है कि भगवान मुझे नर्क में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटा इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बनाना हूँ, आइए आप भी मेरे साथ बराती में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

0: लेकर सारे बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा कुमोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में विष भर को लटकाए, अपनी पार्वती को ले जाने को,
1: अपनी पार्वती को ले जाने को।
2: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये है कि रोज टीवी में खोल लू, दरवाजा भी मैं पकाऊ।
3: ना मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो हाथ में जर पंजा ढीले कर दिए। कम वक्त देसी में जंगली भैया। अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
4: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
3: अरे चुप रे जंगली वाला, कहीं का चल, एक दो डोल पानी डोला, दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
4: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई, कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
3: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
4: तो अरे वही बसंती।
3: अच्छा, और तुम्हार मार छुट्टिया?
4: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
2: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है, तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: तन बदन चल गया, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गए। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं है। बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
2: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब?
3: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
2: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
3: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
2: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
3: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? उन्हें बाबू अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
2: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर आ गया हूँ।
4: आप अपना धंधा फैलाने आए और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
5: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
1: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीर पंडित बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के अहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद्ध, नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है मगर फिर भी मैंने पंजाबी भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।
0: यार हमारी बात सुनो,

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हाँ, मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट यानी मुख्तफा जबान में सी ए, और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं और रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए वरना।
2: अरे तू

हम कोई मोटा नहीं, एक जो हट खाएंगे हम तो मनसूर है, सुमित भी चढ़ जाएंगे। देखना लगे मगर नाम तुम्हारा होगा, मरते मरते भी।

0: था अभिनेता जीवन पर।
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
2: आज के फनकार।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। नरसिंहपुर जिले में पारा 45 से 44 डिग्री होने के बाद अब तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो रही है, तो वहीं गर्म हवाओं की जगह धीरे धीरे उमस अपना स्थान ले रही है। खेती के नजरिए से ग्रीष्मकालीन मूंग खेतों में तैयार होकर अंतिम दौर में है, वे किसान कटाई की तैयारी में नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र के ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन जारी है। उप संचालक कृषि मोरिस नाथ ने बताया कि मूंग और उड़द के लिए तहसीलवार कुल 46 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मूंग के 13,000 से अधिक और उड़द के लिए 14,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। जिले में किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति का आकलन करने हेतु व्यापक स्तर पर मृदा नमूना संग्रहण कार्य किया गया है। नरसिंहपुर जिले में कुल 4,400 मृदा नमूने संग्रहित किए गए हैं। मृदा परीक्षण के माध्यम से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन कर किसानों को उनकी भूमि के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह प्रदान की जाती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले से प्रदेश के 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में योजना की 36वीं किस्त के रूप में 1835 करोड़ रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 296.34 करोड़ रूपये लागत के 40 विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान नरसिंह की ये भूमि वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम की साक्षी रही है। नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। वहीं गाडरवाड़ा की तुअर दाल देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। पिछले दिनों नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित जलसंवाद कार्यशाला में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वैश्विक जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए भूजल भरण की विशिष्ट तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। पिछले दिनों पीएमश्री शासकीय कन्या नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काटरवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धरती का आंचल हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि एक यादगार पल है और एक मौका भी है। आज के दिन हम संकल्प लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा जरूर लगाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मानवाधिकारों से जुड़ी योजनाओं क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया, मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीयन शिविर का आयोजन नगरपालिका परिषद नरसिंहपुर में किया गया। शिविर में 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों को योजना में पंजीयन कर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अपनी पहल पर जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के माध्यम से जिले के विकास से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, स्वावलंबन और अधिकारों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, स्टोर रूम, मदर रेस्ट रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का।
2: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं आपका आपके अपने प्रोग्राम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन में। मैं हूं मनोज सक्सेना और बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। आपको याद है ना, पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि अगले कार्यक्रम में हम किडनी पर बात करेंगे। डायबिटीज के कारण किडनी पर क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, आइए इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। सर नमस्कार।
3: नमस्कार
2: सर, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि डायबिटीज से किडनी को किस तरह से नुकसान होता है।
3: देखिए, ऐसा है कि मधुमेह में हमें खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% रखना है। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। कारण ये है कि ये मूलभूत बात लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों रखना है? क्योंकि इसका बुरा असर पड़ता है, जो शोधों में आया है, जो कि सीधा सीधा है, बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो आंखों के पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, गुर्दे में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है और पैरों में न्यूरोपैथी होती है। तो ये तीनों ही चीजें अपने आप में विकट परिस्थिति है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो कि किडनी हमारे शरीर की, जो देखा जाए तो एक छन्नी है जो शरीर की सारी गंदगी को छान देती है और जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। तो मान लीजिए अगर किडनी को तकलीफ हो गई, छन्नी ने काम करना बंद कर दिया, तो विषालयता तो शरीर में जमा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर आपको तकलीफ देंगे, आपका व्यवहार अंतर आएगा, शरीर में पानी रुकेगा और दूसरी प्रॉब्लम आएगी, यूरिया क्रिएटिनिन आपका बढ़ने लग जाएगा। तो इसलिए डायबिटीज के मरीजों में जब भी डायबिटीज का मरीज आता है, टाइप 2 डायबिटीज का, तो उसे तुरंत उसी समय हम स्क्रीन करते हैं पेशाब में माइक्रो एल्बुमिन नाम के प्रोटीन का। तो ये माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन नॉर्मल आदमी में 30 के अंदर होता है। जब भी ये 30 और 300 के बीच में आता है तो हम इसको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कहते हैं, और उसके आगे जब 300 के ऊपर हो जाता है तो वो मैक्रो एल्बुमिन यूरिया होता है। इसके कुछ टर्मिनोलॉजी समय समय के हिसाब से बदल जाती हैं, पर मोटे तौर पे ये अंदेशा बताता है कि आपके गुर्दे अब खराब होने वाले हैं।
2: सर, इतनी गंभीर यह समस्या है कि जो भी डायबिटिक व्यक्ति है वह हमेशा ये मन में लेकर चलता है कि मेरी अब किडनी खराब हो ही जाएगी। क्या वाकई ऐसा है?
3: देखिए, अच्छा नियंत्रण जो है वहाँ पे आपके जीवन की खुशियाँ छिपी हुई हैं। अच्छा नियंत्रण अगर आप लेते हैं, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर रखते हैं, नियमित डॉक्टर को दिखाते हैं, संयमित भोजन करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि किसी भी प्रकार से गुर्दे में कोई तकलीफ होगी। और आप अच्छे डॉक्टर हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो निरंतर नियम से समय समय पे आपकी गुर्दे की जांच करके देखेंगे। जब भी खराबी आएगी तो वो आपको आगाह करेंगे कि भाई संभल जाओ, दर्द की गोली मत लो, हरे पन्ने की गोली मत लो, पीले पन्ने की गोली मत लो, अपने मन से दवा मत लो, और शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर गुर्दे में पथरी है और डायबिटीज है तो और ज्यादा सतर्क हो जाइए, पथरी का इलाज समुचित करवाइए, क्योंकि पथरी के कारण भी गुर्दा खराब होगा, डायबिटीज के कारण भी गुर्दा खराब होगा, इन्फेक्शन होगा उसके साथ साथ, तो चीजें बहुत विकट होने लगती है।
2: सर, इलाज की हम बात करते हैं।
3: सबसे पहला इलाज है कि आप शुगर बिल्कुल जैसा किताबों में लिखा है वैसा नियंत्रित करें
2: जी।
3: दूसरा इलाज ये है कि माइक्रो एल्बुमिन यूरिया हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ब्लड प्रेशर की कुछ गोलियां होती हैं, वो दी जाती हैं समुचित मात्रा में, एक योग्य डॉक्टर को वो लिखने दीजिए। तीसरा इलाज ये है कि डॉक्टर ये देखे कोई ऐसा और कारण तो नहीं है जिसके कारण गुर्दा खराब हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि मधुमेह के कारण हो रहा है, कहीं ब्लड प्रेशर के कारण तो नहीं हो रहा। अगर है तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करें, किसी इन्फेक्शन को अगर है इन्फेक्शन तो उसको नियंत्रित करें। तो इस तरह से विवेचना करने पे सही दिशा में इलाज होता है और गुर्दा प्रत्यारोपण की नौबत नहीं आती।
2: हमारे एक श्रोता है, उनका नाम है रीति निगम। उन्होंने अभी अपना पथरी का ऑपरेशन कराया है, लेकिन पथरी ने उनकी किडनी पर थोड़ा सा इफेक्ट डाला है, क्या वे डायबिटिक होने की संभावना है उनको?
3: देखिए, पथरी होने से डायबिटीज नहीं होगा, पर ऐसा हो सकता है कि उनको साथ में 2 बीमारियां हो। अगर उन्हें मधुमेह भी है और पथरी की समस्या भी है, मधुमेह भी अनियंत्रित है तो पथरी की समस्या, पथरी से होने वाला इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, वो इन्फेक्शन बढ़ेगा तो हालांकि वो पथरी के कारण हुआ है पर मधुमेह उसमें घी का काम करेगा, तो अगर वो आग तेज होगी तो दोनों ही अंगों को जलाएगा वो।
2: श्रोताओं, हमारा लक्ष्य यही है कि हम आपको छोटी छोटी इन समस्याओं से आगाह कराते रहें। आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई परिवर्तन दिखता है जो असामान्य है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के जाने माने सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन्स रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। अगले कार्यक्रम में हम फिर इस तरह की बातचीत आपको जरूर सुनवाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर सचिन चित्तावार का नमस्कार।
1: श्रोताओं अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ मन। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। 10:10 हुए हैं और समय हो चला है आपका फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आपका बहुत बहुत स्वागत है फरमाइशी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का। श्रोताओं आपके इस प्रोग्राम में आपके खतों को शामिल किया जाता है, आपके द्वारा फरमाइश किए गए गानों को शामिल किया जाता है। तो चलिए इस श्रृंखला में सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं इन फरमाइशी श्रोताओं के गानों को, जिसमें हमें फरमाइश लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, सहेली रेडियो श्रोता संघ आजाद रोड सनावत से बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिक्रा, मोहम्मद सगड़ खत्री। आप सभी की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पेमेंट फेल।
1: पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए।
2: गई मेरी मेहनत की कमाई।
3: हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप।
4: या बिल,
3: मेरी फीस। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आइए श्रोताओं, आप सुनवाते हैं आपको इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत, जो हमें लिख भेजा है गुलाम रोड हर गोविंद नगर से सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा और प्रतिशा संधू और मैक्स ने। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाने, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। तो चलिए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं इन सभी की पसंद पे ये प्यारा सा नगमा।

वैसे तो अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। चलिए अब अगले खत को शामिल करते हैं जो हमें लिख भेजा है शीतल रेडियो श्रोता संघ से ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन, बेबी आरोही ऐशिका, अंजिल श्वेता वर्मा ने इसी खत की इसी गाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और उनके बहुत सारे साथियों ने। तो चलिए श्रोताओं आपको सुनवाते हैं इन सभी की पसंद पे ये प्यारा सा गीत।

इसी प्यारे से गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश यही संपन्न होता है। इस समय सुबह के 10:30 बजे हैं और ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। और श्रोताओं, समय हो चला है महिलाओं के मनपसंद कार्यक्रम का, महिला जगत। तो चलिए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम महिला जगत की ओर।

छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए, हर पल को दिल से जी जाइए। जीवन बहुत खूबसूरत है, बस मुस्कुराना मत भूल जाइए। इसी विचार के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। मैं हूं आपकी रेडियो सखी उर्वशी पांसे। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को बता देते हैं। आज हमारी बात का विषय है विविध संस्कृतियों में महिलाओं की भूमिका। इसके साथ ही आज यह श्रृंखला हमारी बात सखियों के साथ, जिसमें हम आज बात करेंगे मायके से जुड़ी यादों के बारे में, और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए होंगे प्यारे प्यारे गीत संगीत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर हमारी आज की बात के साथ। सखियों, आज जब हम विभिन्न संस्कृतियों और समाज में महिलाओं की भूमिका पर बात करते हैं, तो हमें बीते कल और आज के इस खूबसूरत बदलाव को भी देखना होगा। आज की महिला केवल इतिहास के पन्नों में लिखी हुई मुक सहनशीलता का प्रतीक नहीं, आज की महिला बदलाव का चेहरा है। आज की संस्कृति में उनकी भूमिका बहुआयामी हो चुकी है। चाहे विज्ञान की कोई नई खोज हो, या कोई नया बिजनेस स्टार्टअप हो, या कला और साहित्य का मंच, महिलाएं अपनी अनूठी सोच और नए विचारों से दुनिया को हैरान कर रही हैं। आज महिलाएं सिर्फ व्यवस्था का हिस्सा नहीं, वे व्यवस्था का को चला रही हैं, वे निर्णय ले रही हैं, नीतियां बना रही हैं और बड़े बड़े संगठनों का नेतृत्व कर रही हैं। श्रोताओं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की नारी अपनी आधुनिक उड़ान से के साथ साथ अपने सांस्कृतिक जड़ों को भी नहीं भूली है। वह घर के आंगन को भी संभालती हैं और दफ्तर के आसमान को भी छूती हैं। श्रोताओं, लेकिन आज के इस दौर में हमें यह भी समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ उन्हें अवसर देना नहीं, बल्कि उनके विचारों का सम्मान करना है। जब महिला को अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा को खुलकर जीने का मौका मिलता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है। श्रोताओं, जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत हमारे घर से होती है। महिलाएं केवल समाज ही नहीं, बल्कि हमारे घरेलू पर्यावरण की भी रक्षक हैं। घर के भीतर संस्कारों का पोषण करना, बच्चों में प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम जगाना और एक सकारात्मक माहौल तैयार करना, यह सब एक महिला की रचनात्मकता से ही संभव हो पाता है। वह घर को सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला बनाती है। श्रोताओं, महिलाएं जब शिक्षित और जागरूक होती हैं, तो वह पूरे घरेलू पर्यावरण को बदल देती हैं। वह अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि उन्हें संवेदनशील इंसान बनाती हैं। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की बात, और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए।

सबसे खूबसूरत बात यही है कि एक महिला दुनिया के लिए चाहे कितनी भी लेकिन अपने मायके की दहलीज पर कदम रखते ही वह फिर से वही छोटी बेपरवाह और लाडली बच्ची बन जाती है। वहाँ उसकी जिम्मेदारियों का कोट उतर जाता है और वह खुलकर जी सकती है। सखियों मायका हमारे लिए किसी इमोशनल स्पा से कम नहीं। वहाँ कोई थेरेपी नहीं होती, बस माँ के हाथ से बालों में होने वाली तेल की मालिश, पापा के साथ बैठकर दुनिया की बातें और भाई बहन के साथ पुरानी खींचातानी होती है। पर इतने भर से ही दिल का सारा टेंशन और भारीपन ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि कभी था ही नहीं। तो चलिए हम भी इस प्यारे से गीत के साथ अपनी टेंशन को करते हैं कम और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, माइका सिर्फ माता पिता का घर नहीं है, वो हमारी सहेलियों, गलियों और उन छतों का म्यूजियम है जहां हमने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे सपने बुने थे। जब भी हम वहां जाते हैं तो हर नुक्कड़, हर दुकान और स्कूल का वो पुराना रास्ता हमें देखकर मुस्कुराता है और कहता है, लो हमारी लड़की वापस आ गई। सखियों, माइका हमारी वो ओरिजिनल आईडी है जो हमें याद दिलाती हैं कि हम असल में कौन हैं, हमारी बुनियादी आदतें, हमारी खिलखिलाहट और हमारा असली मिजाज कहाँ से शुरू हुआ था। माइका वो इकलौता कोना है सखियों जहाँ जाते ही जिम्मेदारियों का चश्मा उतर जाता है, जहाँ हम किसी की बहू, पत्नी या माँ नहीं होती बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद के रूप में खुलकर जीती हैं, वहाँ आज भी हमारी मर्जी चलती है। तो चलिए इस प्यारे से गीत के साथ अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं।

सखियों, मायका मतलब वो जगह जहां आज भी चाय हमारे पूछने से पहले टेबल पर आ जाती है और मनपसंद खाना बिना फरमाइश के बन जाता है। सखियों, मायका एक ऐसी अनोखी टाइम मशीन है जिसके दरवाजे के अंदर कदम रखते ही हमारी उम्र सीधे 15 से 20 साल कम हो जाती है। हम चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो या खुद कितने ही बच्चों की माँ बन चुकी हो, उस चौकट को पार करते ही हम फिर से वही नटखट और बेपरवाह लड़की बन जाती हैं। सखियों, जब ससुराल की जिम्मेदारियों, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के काम हमें पूरी तरह थका देते हैं, तब मायके की 2 दिन की ट्रिप हमारी बैटरी को 100% कर देती है। वहां से सिर्फ यादें नहीं बल्कि जीने की नई ऊर्जा लेकर लौटते हैं। सखियों, एक उम्र के बाद मायका सिर्फ एक घर नहीं रहता, वो एक एहसास बन जाता है, एक ऐसा एहसास जिसे हम अपने साथ एक पोटली में बांधकर ससुराल ले जाते हैं और जब भी उदास होते हैं उस पोटली से थोड़ी सी धूप निकालकर अपने आंगन में बिखेर लेते हैं। तो चलिए हम भी फिर से इस संगीत की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो सखियों, ये थी हमारी हमारी बात सखियों के साथ। और अब कार्यक्रम में आगे हम आपको बता देते हैं कल के आकर्षण के बारे में। श्रोताओं, कल का कार्यक्रम भी होगा बेहद खास, जिसमें आज की बात का विषय होगा खेल, रचनात्मकता और बच्चों का विकास। साथ ही मुलाकात में बात होगी एक नए मेहमान से, और आपके मनोरंजन के लिए होंगे प्यारे प्यारे गीत और संगीत। तो सुनना ना भूले कल सुबह 10:30 बजे हमारा महिला जगत प्रोग्राम आपकी रेडियो सखी संगीता पल्लेवार के साथ। तो सखियों, श्रोताओं, अब दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो सखी उर्वशी पांसे को। आपसे जल्द फिर होगी मुलाकात इसी वादे के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
1: श्रोताओं, भी आपने सुना महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से थोड़ी देर में विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा, तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। इस मिश्र संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ अलग अलग तरह के गीत, अलग अलग गायकों द्वारा गाए गए। लीजिए पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको लकी अली की आवाज, शब्द रचना भी इन्हीं की और संगीत भी लकी अली का। एल्बम का नाम अक्स।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए अलीशा चिन्हॉय को, डांस डांस इस एल्बम का नाम है, अनजान के बोल है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

आइए सफर एल्बम का गीत आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में। इससे संगीत से सजाया है लकी अली ने और लिखा है सईद असलम ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं पॉप एल्बम का ये गीत, आवाज गुल सक्सेना की और किरण ने साथ दिया है। गीत और संगीत किरण, प्रगति तोमर और सौरभ ठाकुर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनोरे
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: अविनाश कुमार अभिषेक शुक्ला की आवाजों में अभी आपने सुना, इन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत और रचना भी थी इन्हीं की। और आपको अगला गीत सुनवाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए, फिल्म का नाम सात खून माफ। उषा उत्थप और रेखा भारद्वाज, गुलजार के बोल और धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।
2: हे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव

चारवीं मशवा मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं ना कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी मुखर्जी ने। देव कोहली की रचना, जगदीश जे का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: कलाकार फिल्म का गीत आपने सुना, सुरेश वाडकर की आवाज में इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर। मुकेश के स्वर, शकील पदायुनी की रचना और नौशाद अली का संगीत।

0: सुरैया की आवाज में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूनी की थी और नौशाद अली का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार।

0: कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी। तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

साथियों, इस गीत की हम आपको सिर्फ झलक सुनवा पाए हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, जो आज आप तय करेंगे अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। तो कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की

मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कन ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए हैं ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो, तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी टिटोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची हैं? जब आपकी टिप्पणियां देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान ले, समझ ले, हमारी भावनाएं समझ ले। तो चलिए, इसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत है उनमें एक और खास बात है, वो भी आपको पहचाननी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डाली ही है, अब आपको पहचाननी है क्या है। लीजिए, आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। तब तक सोचिएगा सारे गीतों में क्या बात कॉमन है।

कि उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय।

0: मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: छोटी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुरंग, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

तो अगर अब मैं ये कहूं कि आज तो आप लोगों ने गुगली डाल दी है। हाँ, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं। और आप लोगों ने सच में जो पहचाना है वो बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है, गानों के बीच में या शुरुआत में कुछ वाक्यांश या नायक नायिका जिस पर ये गाना फिल्माया गया है उनकी आवाज है। जी हाँ, ये बात सही है। शायद आज किसी ने लिखा है, शायद आज के सब गानों में संवाद है। जी हाँ, ये भी सही है। किसी ने लिखा है, शायद वार्तालाप नुमा गाने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने कहा, सभी को मैं अभी अभी जुड़ा हूँ, इबारत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे ऐसा लगता है कि आज के गानों में जो आम बात है वो ये है कि गाने ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही है। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाजें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए, कुछ जो टिप्पणियां आई है हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां कर रही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहाँ दिल की बात जुबां पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों की मासूमियत को दर्शाती है जहाँ आंखों की भाषा और धड़कनों की सरगम शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहला पहला प्यार जब होता है तो हमें लगता पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणियां हैं वो भी यही सब कह रही है। बहरहाल, सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी का संगीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्पणियों के बारे में। एक साथी ने लिखा है, मुलाकातें प्रेम में कितनी जरूरी है ये तो प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जब प्रेम होता है तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा कम बोलना और हर बात को समझ लेने की शुरुआत प्रेम से ही तो होती है, पर प्रेम का हर पल मूल्यवान है। यही पल है जो हसीन है, खुशनुमा है, इन पलों को जाया न होने दें, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। किसी ने लिखा है, आज की इश्किया इबारती इमरती में मिठास ही मिठास है, जहां प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार इकरार तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए जरूरी हैं, जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब आपको यदि इस इबारत से समझ आ गया है कि हाँ आज हम कौन से गीत सुनवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आइए अब आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं, और शब्द तो जैसे कि आपने पहचान ही लिए हैं, तो लीजिए सुनिए ये गीत कल आज और कल इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें। नीरज ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। आप यहाँ आए किस लिए, तो यही वो शब्द हैं जो आपको पहचानने थे।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: शादी आजादी है।
0: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: daj.
1: हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहाँ जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी। यही तो उस दौर की तहजीब

और परवाह है, जहाँ सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं, बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है, जिसे जितनी बार पढ़ा जाए, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके जमाने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं जिंदगी के नए सफर में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा जरूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो, जब आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफर की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोड़ पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके,

अच्छा भी खो जा।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। सुनो, मेरी तो धड़कने ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी, और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

0: नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या।
1: और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत, फिल्म हमसे आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है। जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्म पत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था जो आज तक धर्म पत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

0: मैं
1: हाँ तुम
0: बस तुम
1: ओफो। तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोकझोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं न कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए, चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
2: अच्छा।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं। लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है। इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

0: धरती पर जितने भी।
1: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उन्होंने पीएम जनधन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजनाएं उनके दिल में खास जगह रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कार्यकाल की सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकलकर सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं।
2: हम सबका सौभाग्य आज भारत की आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सर्वाधिक अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक 80 करोड़ लोगों का तो पेट भरना और 25 करोड़ लोगों का मकान दे 25।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर काम करता है वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। विदेशी मेहमानों ने इंदौर का मशहूर पोहा जलेबी का नाश्ता भी चखा। सम्मेलन में आज साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श होगा और शाम को द्विपक्षीय बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। यह नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रावधान को तत्काल पोर्टल से हटाने और नया प्रारूप प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। वहीं भाजपा का आरोप है कि नटराजन ने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई जिसके आधार पर कल उनका नामांकन रद्द किया गया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर व दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति भवन से इसकी औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के अटलव मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों की जिला स्तरीय समन्वय समिति DLC की बैठक आज आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी तो संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
4: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान

0: न्याय में सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार की मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम करना, देश के विकास में काम करना। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूँ कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
2: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार विसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
4: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए, एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
4: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
5: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसमें क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
7: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जरडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इसराइली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इसराइली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदा बहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बहु बेटी फिल्म का गीत अब सुनिए। आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

दिल पे नहीं है काबू। हाय

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सदा बहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: काम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, और वो कहते हैं ना जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है, एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: है ना। और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल,
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है। ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हमें एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है ना। उसको तो अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे
1: हजार
0: हजारों।
1: होते हैं।
0: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना।
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है या संवाद पीछे छूटता जा रहा है,
1: और किस तरह का संवाद होता है।
0: है ना। हाँ
1: बिल्कुल, और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार।
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है ना, और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
1: बिल्कुल, और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो
1: जी
0: बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है, तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए, यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और सोना लीजिए जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का, और अब क्या करें।
1: जी, अब एक गाना सुनवा देते हैं,
0: सुनते
1: बहुत बातें हो
0: हैं
1: गई है।
0: सुनते हैं कि
1: ठीक।

0: तो नेहा, मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊँ।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं। इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं। पर वो
1: बिल्कुल
0: बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति

0: जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
0: जी।
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती है तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत

0: कहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
0: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है। नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
1: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी तो उनकी भी आंखें ले गए और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
0: बहुत अच्छा कार्य किया है। और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है और मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
1: एक साथ ही लिख रहे हैं, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: चंदेरी। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है, जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है, तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं, जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरी युक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं।
0: क्या बात है, क्या
1: मुझे
0: बात है।
1: शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं। उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ न मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारे दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना यहाँ, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है सब्जियां हैं फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है। इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोलेंगे अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहणियां अक्सर असमंजस में पड़ जाती है कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही है सोना लीजिए।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीठ बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनकी गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
0: डेवलप हो जाते हैं।
1: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है, उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
0: उसे करेला भी दीजिए,
1: उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
0: और हम ऐसा कहते नहीं कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
1: हर
0: आप जो खाते
1: थोड़ी थोड़ी,
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। अगर उसने मना किया, बहुत रोया, तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए स्वाद।
0: सुनते हैं।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना
0: हाँ, तो
1: चाहिए।
0: घर की जो गृहिणियां हैं वो बड़ी खुश होंगी, है
1: हाँ,
0: ना।
1: अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़ दिया। हाँ वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भी छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसा देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो, पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है।
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है
0: जी
1: सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं, इसलिए ऐसी।
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी, और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी, मैं वही खाऊंगी। क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें, और
1: सादे होते
0: उसमें
1: हैं।
0: टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं, जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी, मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब
0: जब
1: आप उन्हें
0: हम देंगे,
1: चखाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं। तो
0: तो ये
1: जैसे
0: थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे,
1: हाँ
0: और
1: ये
0: दो
1: तो
0: सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतू, घर में 4 लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए, बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है।
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है, तो हर घर की समस्या है, घर में लोग 4 खाने के नखरे, 1000 पूछिए मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत है, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहिणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ

0: जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है, उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
1: या फिर खाना तैयार है कि नहीं, हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे। इस तरह से यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया और वो रहनिया है जो वो भी मैसेज लिख देती है, हाँ हाँ खाना रेडी है, अब आ जाइए।
0: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
1: और आप क्या करें?
0: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है,
1: तो चलिए गाना सुनते हैं।

सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो।

तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं।

0: नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के, मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छीलकर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंचफोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें, इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भूने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी ही खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत
0: चाहिए।
1: टेस्टी हो गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है, पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है, बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे, बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे, मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले, 5 फोड़न का तड़का दे, बैगन को भून कर निकाले, अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले, अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले, पानी में भीगे बड़ी भी इसमें डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे और इसमें धीमे आंच तक पकने दे, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है, पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती, मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं, और आप क्या करें?
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़े मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में।
0: हाँ।
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: नहीं है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।

सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ, तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय में इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता ही जम जाए।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
2: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
1: जी जी जी।
2: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
2: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते थे तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
1: जी।
2: तो या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है
1: जी जी।
2: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है
1: जी,
2: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के संबंध में इतने तंज करते हैं, तो यानी एक जो किशोर मन,

0: एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है। सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं। तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा।
0: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी, और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान।
1: जी,
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सरोसर राव सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
1: 3 पेज
0: की चिट्ठी,
1: और
0: हाँ उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैं सब लिख दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई। तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं, लौटाई, बोला कि ये तो कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मेरे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ, तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है,
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊँ तो मुझे खुशी होगी, और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है।
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी, क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर।
0: नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो

0: नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
1: ये
0: प्रस्तुति थी।
1: प्रस्तुति
0: तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, इस पे कानूनी कार्रवाई होती है। किस बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी। आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं, उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी सबसे
0: चलेगी। तो
1: पहले।
0: ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा, यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: जी
0: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए, अपने को एक्सप्रेस करते करते
1: जी जी
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहां हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया, और खास तौर से उनका नाम हम यहां पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहां हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की
0: 3 लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं। पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी। मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक। और शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता। तो वो कहानी छप गई, तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमयन कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूं। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप, ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए

0: लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं, तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10 15 10 15 10 15 के अनुपात में सुर में कविताएं लिखने लगा। हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रुमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी,
1: जी
0: ये 80s इससे लेके 90 तक, वो सारी कविताएं छपती रही छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं, लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं।
1: क्या
0: फिर
1: बात
0: बाद की जितनी कविताएं थी
1: है
0: वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी।
0: जी,
1: तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता,
1: दो लाइन
0: एक
1: सुनाइए।
0: कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूं, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है, इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी,
1: जी
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में, मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली
1: ओ
0: और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का
1: बिल्कुल
0: सुख था, वो जाने पते भी जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई निकल देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई, उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी।
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो उनकी घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSC Part 1 में रहा हूंगा तब
1: जी
0: मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है,
1: जी आप अगर सुनाए हमारे श्रोताओं को
0: हाँ,
1: तो चार लाइन।
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूं। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है,
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है,
1: ओ गजब।
0: घर में पैसे चार नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटे कितनी खाल न पूछो,
1: वाह
0: अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है,
1: क्या बात है, वाह
0: बहना का
1: शेष कुशल।
0: संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है,
0: आखिरी
1: बहुत।
0: बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं,
1: वाह
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम

0: हैं, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपके गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे।
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार
1: दूसरी
0: साये
1: चीज,
0: में धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साय में धूप,
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा।
0: अनकहा
1: तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादे से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
0: क्या बात,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वाली आसी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी जी,
1: तो हम
0: जी।
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक, हाँ, जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या कहानी है?
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
0: जी,
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
0: जी,
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
0: जी,
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300

0: फिर नाटक व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक हाँ। जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके बारे में बताइए इसकी क्या कहानी है।
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक कैरेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
0: जी
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं
0: जी
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300

0: कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्री की तरह है।
1: जी जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ बिल्कुल,
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी हाँ, उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
1: जी जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है,
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका आशीष था
1: जी
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
1: जी।
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी है, इरशाद कामिल है और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने
1: कहाँ पर था, किस
0: वेदा कुंडा थिएटर में।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी, 9 भाषाओं में अब तक
1: मराठी में
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग। हिंदी में तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
1: तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से।

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है। बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, एक ऐसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई, उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरी उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला। तो ये मलाला के लिए ये कविता है। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है

0: इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं, और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई
1: जी
0: आपको
1: जी
0: मिलेंगे,
1: क्या
0: जो
1: बात है।
0: न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें
1: जी
0: दर्ज
1: जी
0: है।
1: क्या बात है। अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह मार्मिक कविता।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे,
1: ओ
0: एक माँ,
1: ओ
0: एक खबर।
1: ओह बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए, पान खाएं सैया हमार, हो न जाइए।
1: क्या बात है। सुनते हैं ये गाना।

0: ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की ये तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए, मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हड़पनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: जी
1: हड़पनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है,
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है,
1: तो आप
0: वाह।
1: उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में और वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब
0: जी
1: हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है
1: हाँ,
0: जहां आपका
1: क्योंकि
0: बचपन
1: आपको
0: बीता।
1: लगता है कि शेर में था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है,
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: देखिए,
0: पहुंचे?
1: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके,
0: जी
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं,
0: जी जी
1: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको
1: नहीं,
0: या
1: आपको
0: यहाँ
1: मना किया? हम तो
0: सकारात्मक
1: समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सेक्रेटरी बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते ही कहते थे कि आओ, घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो,
0: जी।
1: हमने क्या कर उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम
0: आए हैं
1: लगाने आए हैं,
0: जी,
1: हम
0: बिल्कुल,
1: कुछ
0: क्या
1: बोने
0: बात
1: आए
0: है।
1: हैं, हम कुछ
0: सृजन
1: सृजन
0: करने
1: करने
0: आए
1: आए
0: हैं।
1: हैं।
0: जी।
1: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत यह, मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास। तो
0: नजरिया।
1: अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
0: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे,
1: पहली
0: क्या
1: बार
0: थी सीढ़ी
1: हम
0: आपकी?
1: अखबार, देखिए मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया,
0: जी।
1: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना।
0: जी।

0: अरविंद कालिया जी ने मुझे बुला के रखा,
1: इलाहाबाद के।
0: मैं अकेला ही पीर बावर्ची हिस्ट्री खर था उनके साथ,
1: जी
0: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा,
1: जी
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ, तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाश है उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
1: जी,
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां
1: जी,
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं इस उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तो पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
1: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है,
1: बिल्कुल,
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है, लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी, जी, जी,
0: कविता माने कविता नहीं रही
1: जी, जी।
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है तो वो फिर प्रचार की कविता है, ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
1: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है?
0: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, वही सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
1: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन
0: उसके लिए दीजिए।

0: लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुशी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रात आती है तो साथ लाती है ख्वाबों का जहां, साथ लाती है ढेर सारी यादें। यादों में एक अनोखी दुनिया होती है, जिंदगी की पुरानी तस्वीरें होती हैं यादों में। यादों की चौखट पर बैठ

रात मुराद पूरी होने की रात, एक मुराद चांद पर पहुंचने की, एक मुराद चांद को देखने की। चांद और रात ये एक दूसरे के हमसफर हैं। एक रात यादों की रात, यादों में मोहब्बत के चिराग जलाए, गम के मध्यम आज पर जज्बात पिघले, ख्यालों में उनका मुस्कुराना और फिर उदास हो जाना, यादों में सितारों को हथेली पर रोपना और मुस्कुरा देना। इन दिनों दिल इन्हीं में रहता है मसरूफ।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये दिल को क्या हुआ, अपने काबू में न रहा, औचक दिल में बातों का सागर भर गया, औचक आंखें खोई खोई सी रहने लगी, बिना बात होठों पर मुस्कुराहट तिरने लगी, आंखें बिना काजल कचरारी लगने लगी। ये शायद किसी के आने की चाप है जिसने दिल का मौसम बदल दिया,

के धारे मोड़ दिए उन्होंने। उगते सूरज की लाली ने चेहरे को रंगीन बना दिया और दिल को हसीन। भली सी सूरत, भला सा नाम, दिल की धड़कन बन गए। निगाहों से वे दिल में समा गए। उनके हुस्न का जादू आंखों में तिराया। उन्होंने दिल से करार किया और मासूम दिल उनकी मोहब्बत की गिरफ्त में आ गया।

नहीं रोका तेरी हमको, जादू न चलेगा हमको, जादू न चलेगा। नहीं रोका तेरी हमको, जादू न चलेगा हमको, जादू न चलेगा।

उनके आने से पौधों में अंकुर फूटे, खिली कलियां मुस्कुरा उठी, फूलों में ताजगी आ गई, बारिश की बूंदों से सज उठी धरती। उनके आने से आसमान में जैसे किसी ने नीला रंग छिड़क दिया हो। खुशनसीब दिल को एहसास हुआ कि उसे प्यार हो गया है। सारी कायनात जब खूबसूरत लगने लगे तो समझो कि उसे प्यार है किसी से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन
1: एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपके अपने साथी मिनी। दोस्तों कहते हैं कभी कभी एक छोटी सी बातचीत वह काम कर जाती है जो बड़े बड़े प्रयास भी नहीं कर पाते। एक संवाद नाराजगी को मुस्कान में बदल सकता है, गलतफहमियों को दूर कर सकता है और रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकता है। इसलिए आज की बात में हमने एक ऐसा

विषय चुना है जो हर उम्र, हर रिश्ते और हर परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। आज की बात का विषय है, संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो आइए अगले कुछ मिनटों में समझते हैं कि आखिर संवाद इतना क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह हमारे जीवन को अधिक सकारात्मक, सरल और खुशहाल बना सकता है। जीवन में समस्याएं आना बिल्कुल सामान्य बात है। कभी परिवार में मतभेद हो जाते हैं, कभी दोस्तों के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाती है, तो कभी कार्यस्थल या पढ़ाई के दौरान तनाव का सामना करना पड़ता है। यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि अधिकांश समस्याओं की जड़ संवाद की कमी होती है। जब लोग एक दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते या बिना समय समझे निष्कर्ष निकाल देते हैं, तब छोटी सी बात भी बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। साथियों, संवाद केवल बोलना नहीं बल्कि सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना भी है। कम्युनिकेशन एक ऐसा ब्रिज है जो दो लोगों के बीच समझ, विश्वास और सहयोग का रास्ता बनाता है। जब हम किसी से खुलकर बात करते हैं, वो मन का बोझ हल्का हो जाता है और कई बार समाधान अपने आप सामने आ जाते हैं। दोस्तों, आज की फास्ट लाइफ में लोगों के पास समय तो नहीं है, लेकिन बातचीत के लिए समय और भी कम होते जा रहा है। परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कई बार दिन भर में कुछ मिनट भी एक दूसरे से दिल की बात नहीं कर पाते। यही दूरी धीरे धीरे गलतफहमियां को जन्म देती है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में बिताए तो कई समस्याओं को शुरुआत में ही रोका जा सकता है। संवाद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह तनाव को कम करता है। जब हम अपनी चिंता, परेशानी या मन की बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। कई बार समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन किसी का हमें ध्यान से सुन लेना भी बहुत राहत देता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े विवाद, संघर्ष और मतभेद संवाद के माध्यम से समाप्त हुए हैं। चाहे समाज में किसी प्रकार का विवाद हो, देशों के बीच विवाद हो, मतभेद हो या व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं, बातचीत हमेशा समाधान की दिशा में पहला कदम रही है। संवाद लोगों को जोड़ता है जबकि चुप्पी और अहंकार दूरियां बढ़ाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी बात नहीं समझेगा, इसलिए हम बात ही नहीं करते, लेकिन यही सोच समस्या को और बड़ा बना देती है। यदि हम शांत मन से सही शब्दों का चयन करते हुए अपनी बात रखें और सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें तो समाधान की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक छोटी सी कहानी पर विचार कीजिए। दो मित्रों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। समय बीतता गया और दूरियां बढ़ती गई। एक दिन उनमें से एक ने पहल की और कहा, आओ बैठकर बात करते हैं। कुछ मिनट की बातचीत में पता चला कि दोनों ने एक दूसरे की बात को गलत समझ लिया था। वर्षों पुरानी दोस्ती कुछ ही समय में सुलझ गई और यही बात है संवाद का। संवाद में केवल शब्द ही नहीं बल्कि भावनाएं भी शामिल होती है। जब हम सम्मान पूर्वक बात करते हैं, सामने वाले को महत्व देते हैं और उसकी बात को बीच में नहीं काटते हैं, तब विश्वास का वातावरण बनता है। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग भी किसी सफल संवाद की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। आज सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन कई बार आमने सामने की बातचीत की कमी भी पैदा कर दी है। मैसेज एंड चैट्स अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन का प्रभाव अलग ही होता है। दोस्तों, जब हम किसी की आवाज सुनते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तब संवाद अधिक प्रभावी बनता है। युवाओं के लिए भी संवाद कौशल बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे पढ़ाई हो, कैरियर हो, पर्सनल लाइफ हो, अच्छी कम्युनिकेशन

याद रखिए, हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन संवाद समाधान की दिशा अवश्य दिखाता है। एक सच्ची बातचीत टूटते रिश्ते को जोड़ सकती है, गलत फहमियों को दूर कर सकती है और नई उम्मीद को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसके बाद हम एक गीत की ओर, जो इस कार्यक्रम को और भी बनाएगा शानदार।

संगीत की मधुर प्रस्तुति के बाद एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले अंक की ओर जिसमें है इनसे मिलिए, और यहाँ होंगे योगेश्वर देश पांडे जी की बातचीत शुभम वानखेड़े जी के साथ, जिनका विषय है आईटीआई कौशल रोजगार और स्वरोजगार की ओर एक मजबूत कदम। आइए सुनते हैं इसे ध्यानपूर्वक।

0: श्रोताओ, आज हमारे साथ हैं श्री शुभम वानखेड़े, प्राचार्य गवर्नमेंट आईटीआई बैतूल। और आज हम इनसे जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आईटीआई कौशल रोजगार और स्वरोजगार की ओर एक मजबूत कदम। और सबसे पहले हम वानखेड़े जी से यही जानना चाहेंगे कि आईटीआई क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
1: आईटीआई का फुल फॉर्म मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो आईटीआई में जो है हम कौशल आधारित व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें तकनीकी ज्ञान और ऑन हैंड जॉब्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे बच्चा प्रशिक्षण के साथ साथ इंडस्ट्री में अपना प्रैक्टिकल अनुभव भी लेता है और जिससे उसको पढ़ाई के बाद सीधे रोजगार के अवसर और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।
0: जैसा अभी आपने बताया कि जो औपचारिक शिक्षा है उससे हटके है, तो इसमें जो आज के समय में आईटीआई करने से क्या लाभ है?
1: सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश सबसे युवा देशों की श्रेणी में है और हम विकसित भारत का जो सपना हमने बनाया है, तो हमारी जो युवा शक्ति है और जो विकसित भारत का सपना है उसके लिए हमको इंडस्ट्री के लिए जो युवा शक्ति की जरूरत होगी
0: जी,
1: इंडस्ट्री के लिए जो रोजगार की जो आवश्यकता होगी उसके लिए तकनीकी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान जो है वो आईटीआई में सिखाया जाता है। उसकी पूर्ति के लिए हम आईटीआई से युवाओं को तैयार करते हैं, जिससे कि वो इंडस्ट्री में अपना सहयोग दे सके।
0: जैसा अभी आपने बताया कि आईटीआई में बच्चे आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं
1: जी,
0: तो आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की भी आवश्यकता होगी?
1: आईटीआई में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ 8वीं से लेकर आप 10वीं और 12वीं के बाद आप कोर्सेज कर सकते हैं। तो न्यूनतम योग्यता हमारे आईटीआई के लिए 8वीं पास और 14 साल आपकी एज होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास है तो हमारे पास जैसे कारपेंटर है, वेल्डर है और स्विंग टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज है, और वहीं 10वीं या 12वीं पास है आप तो हमारे पास उसके लिए भी बेहतरीन तकनीकी कोर्सेज है, जिसमें आप प्रशिक्षण लेके अपना भविष्य बना सकते हैं।
0: बैतूल जिले की बात करें तो यहाँ पर आईटीआई में किस प्रकार के कोर्स उपलब्ध?
1: हमारी संस्था में एनसीबीटी और एससीबीटी मान्यता प्राप्त कुल 12 व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें मेन है कोपा। कोपा मींस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें 10वीं पास 1 साल का कोर्स है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, ये 2 साल का कोर्स है जिसमें 10वीं पास बच्चा ले सकता है। इलेक्ट्रीशियन है, हाईली डिमांड में है, 2 वर्ष का कोर्स है, 10वीं उत्तीर्ण। और इसके बाद है डीजल मैकेनिक, 1 साल का कोर्स, 10वीं उत्तीर्ण, बच्चा इसमें ले सकता है। उसके बाद मोटर मैकेनिक है, 2 साल का कोर्स, इसमें भी 10वीं उत्तीर्ण। स्टेनोग्राफर 1 साल का कोर्स है, इसमें भी 10वीं उत्तीर्ण। टर्नर 2 साल का कोर्स है। सोलर टेक्नीशियन, जैसे कि आप जानते हैं अभी रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड में है, तो सोलर एनर्जी का जो फ्यूचर है पीएम स्वरोजगार योजना, उसके हिसाब से डिमांड के हिसाब से हमने इस बार सोलर की 2 यूनिट कर दी है। और फिटर है सर, इसमें भी 2 साल का कोर्स है, 10वीं पास बच्चों के लिए। और हमारे पास ड्राफ्ट्समैन सिविल है और 8वीं पास बच्चों के लिए मुख्यतः जो हमारे पास वेल्डर का कोर्स है 1 साल का, और कारपेंटर और वुडवर्क टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, तो इसमें 8वीं या 10वीं पास बच्चे भाग ले सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जिले का जो एक जिला एक उत्पाद है सागौन है
0: जी,
1: हमारे यहाँ के जो फर्नीचर है वर्ल्ड क्लास फर्नीचर है, तो यहाँ पे जो लोकल रोजगार की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि कारपेंटर या वुडवर्क टेक्नीशियन में प्रवेश जरूर लें।
0: इतने सारे अलग अलग प्रकार के कोर्स हैं, तो विद्यार्थियों को जो ट्रेड है उसका चयन किस आधार पे करना चाहिए?
1: छात्रों को जो ट्रेड चुनते समय मुख्यतः 4 बातों का ध्यान रखना है। पहले उनका इंटरेस्ट क्या है सर
0: जी,
1: उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उस कोर्स के लिए वो एलिजिबल है या नहीं
0: जी,
1: और भविष्य में रोजगार की संभावनाएं क्या है, और चौथा है स्थानीय उद्योगों की मांग, मतलब स्थानीय अगर उनको रोजगार मिल सकता है। इन सब चीजों का आकलन करके ही उनको अपना कोर्स चुनना चाहिए। जैसे कि किसी को कंप्यूटर पसंद है तो वो कोपा में ले सकता है, जिसकी ऑटोमोबाइल में रुचि है या इंजन में रुचि है तो मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक में ले सकता है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी में जाना चाहते हैं वो सोलर टेक्नीशियन में ले सकते हैं।
0: अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि हम महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़े, और हमारे समाज में जो महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए ताकि परिवार की आय बढ़े, तो इसके लिए क्या लड़कियों के लिए भी आईटीआई में अवसर है?
1: जी बिल्कुल है, आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारी संस्था में तकनीकी और गैर तकनीकी सभी कोर्सेज में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, और हमारी महिला आईटी बैतूल की छात्रा त्रिशा तावड़े, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया था, वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ऑल इंडिया टॉपर रह चुकी है। हमारे यहाँ की बहुत सारी लड़कियां गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में अपना नाम देश में रोशन कर रही है, और लड़कियां मुख्यतः जैसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कोपा में ले सकती है। स्टेनोग्राफी में हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। ड्राफ्ट्समैन सिविल है। अब ऐसा नहीं है कि लड़कों के कोर्स और लड़कियों के कोर्स अलग है, अब लड़कियां लड़कों के कोर्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा

0: कौशल विकास संचालनालय के आधिकारिक पोर्टल डीएसडी पोर्टल, जिसको डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट पोर्टल भी बोलते हैं, या फिर mpitiCounseling.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन और अपनी पसंद की ट्रेड की चॉइस फिलिंग करनी होती है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे वो, फिर उसके बाद अपने पसंद की चॉइस फिलिंग करेंगे और उनके परसेंटेज, जैसे कि 8वीं और 10वीं के परसेंटेज के हिसाब से जो भी कट ऑफ निर्धारित होगा उनको सीट अलॉट होंगी।
1: उसके बाद विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है और उसके लिए सबसे पहले किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है कि जिसके आधार पर उनका प्रवेश हो जाए?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर आपका। बच्चों को पंजीयन करने के लिए चाहे तो वो नेट कैफे से या अपने मोबाइल से या नियरेस्ट आईटीआई जाकर सहयोग ले सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज जो लगेंगे सर, मूलतः 8वीं और 10वीं की मार्कशीट लगेगी, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, और मूल टीसी जो उनको एडमिशन के बाद देनी होती है, और समग्र आईडी नंबर। और महत्वपूर्ण चीजें है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी,
1: जी
0: ये बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए,
1: ताकि उनको जो भी सूचना है
0: जो भी सूचना है उनको मोबाइल से और उनके ईमेल पे मिलती रहे।
1: जी जी, आईटीआई में प्रवेश मिलने के बाद इनको किस तरह की प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं मिलती?
0: जैसे ही मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आईटीआई सिर्फ थ्योरी क्लासेस नहीं है, आईटीआई जो है व्यवहारिक प्रैक्टिकल टेक्निकल नॉलेज देता है। तो आईटीआई में हमारे यहाँ पे सुसज्जित वर्कशॉप है जहाँ पे गहन प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा छात्रों को व्यवहारिक अनुभव के लिए इंडस्ट्रियल विजिट कराया जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास होती है, उनकी कम्युनिकेशन की स्किल्स की क्लास होती है, और हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भी उनको भेजते हैं जिससे वो व्यवहारिक ज्ञान लेकर अपने जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट को विजिट करके जॉब रेडी हो सके।
1: प्रशिक्षण होने के बाद जैसे आईटीआई इन्होंने कर लिया, उसके आगे पढ़ाई के भी कुछ अवसर उपलब्ध हैं?
0: बिल्कुल सर, आईटीआई के बाद रास्ते की अपार संभावनाएं खुल जाती है, क्योंकि आईटीआई जो 10वीं 12वीं से अलग है, क्योंकि इसमें आपको एक तकनीकी जो प्रमाण पत्र मिलता है उसकी वैल्यू अपनी 10वीं और 12वीं से ज्यादा है। और इसमें सरकार ने एक प्रावधान किया है, अगर आप 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं 2 साल का कोर्स, तो आपको 12वीं की समकक्षता की मार्कशीट भी आप 2 सब्जेक्ट के पेपर देकर ले सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसके साथ ही आईटीआई करने के बाद आपके लिए जॉब के रास्ते तो खुल ही जाते हैं, इसके साथ साथ आगे की पढ़ाई अगर आपको करना है तो पॉलिटेक्निक में आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, या आपको आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है, इंस्ट्रक्टर बनना है, तो उसके लिए आप सीटीएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहे तो अप्रेंटिसशिप, जो गवर्नमेंट का अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके अंतर्गत जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होती है उसमें भी भाग ले सकते।
1: तो अप्रेंटिसशिप में भी उद्योग में कार्य करने का और स्टाइपेंड मिलना, व्यवहारिक अनुभव, ये सब बातें भी मिलती होंगी?
0: अप्रेंटिसशिप में जो पढ़ाई के बाद 1 साल का या 6 से 1 साल का कोर्सेज जो इंडस्ट्री में ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, तो इस गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड और इंडस्ट्री की तरफ से भी स्टाइपेंड मिलता है, साथ में आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है जो आपके फ्यूचर में जॉब के लिए बहुत जरूरी होता है।
1: क्या आईटीआई करने के बाद सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बनती है?
0: आईटीआई करने के बाद बहुत ही ज्यादा अवसर मिलते हैं। हमारे आईटीआई के बच्चे इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बीएचईएल, इंडियन रेलवे में जो लोको पायलट की जॉब आती है
1: जी,
0: उसमें भी आईटीआई के बच्चे एलिजिबल होते हैं। बिजली विभाग, अपने बैतूल में MPPGCL है, उसमें टेस्टिंग असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट, MPEB में टेस्टिंग असिस्टेंट, WCL में ऑपरेटर्स, DRDO हो गया, और ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनमें जॉब के रास्ते खुल जाते हैं।
1: और आईटीआई करने के बाद क्या खुद का रोजगार भी शुरू किया जा सकता है?
0: जी सर, जैसे आईटीआई का नाम ही है, चलो आईटीआई रोजगार की पढ़ाई,
1: जी जी,
0: तो रोजगार और स्वरोजगार, सरकार पूरी स्वरोजगार योजनाओं में आईटीआई के बच्चों को प्राथमिकता देती है, और आईटीआई का उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। रोजगार लेने वाले से ज्यादा हमारा फोकस होता है कि रोजगार देने वाले बने। तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा अपना स्वयं का व्यवसाय खोल सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल ट्रेड वाले अपनी वर्कशॉप या गैरेज खोल सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले अपनी सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, रिपेयर की दुकान खोल सकते हैं, कोपा वाला अपना डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। हमारे यहाँ टर्नर ट्रेड के एक बच्चे ने भोपाल में एक शॉप खोली है, तो उसका टर्नओवर मंथली टर्नओवर उस लाखों का है सर, तो स्वरोजगार की भी अपार संभावनाएं खुलती है सर आईटीआई का।
1: बैतूल जो है एक ग्रामीण और जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जो आईटीआई है उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती?
0: सर, जो दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए जिला स्तर पे हमारे पास पहले तो 2 आईटीआई है, गवर्नमेंट आईटीआई बैतूल और एक महिला आईटीआई बैतूल जिला स्तर, और जो ब्लॉक लेवल पे हमारे पास 4 आईटीआई है सर, गवर्नमेंट आईटीआई शाहपुर, गवर्नमेंट आईटीआई चिचोली, भीमपुर और प्रभातपट्टन। तो जो दूर दराज के बच्चे हैं अपने ब्लॉक की आईटीआई में भी एडमिशन ले सकते हैं, और विशेषकर हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए उनको दूर दराज से आए परेशान न होना पड़े, इसलिए हमारी जो एकलव्य महिला आईटीआई है उसमें हॉस्टल की सुविधाएं हैं, उसमें रहने खाने की सुविधाएं हैं और प्रति माह बच्चियों को 1,000 रूपए, जो आदिवासी बच्चियां हैं उनको 1,000 रूपए सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है।
1: कोई भी बालक बालिका जो चाहता है कि इसमें प्रवेश ले आईटीआई में और अपना भविष्य बना ले, तो ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी विचार विमर्श कर रहे हैं?
0: मेरा सभी युवाओं और युवती जो 8वीं और 10वीं पास हो चुके हैं और 12वीं पास हो चुके हैं और कंफ्यूज है कि आगे क्या करना है, तो अभी आईटीआई का प्रवेश चालू हो गया है 26 मई से 30 जून तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया एमपीआईटीआई काउंसलिंग पोर्टल पर चालू है, तो वो उसमें पंजीयन जरूर करें। नॉमिनल फीस है 50-60 रूपए की और चॉइस फिलिंग में भाग ले और अपनी रुचि के अनुसार ट्रेड का चयन करें और किसी भी तरह कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो नजदीकी गवर्नमेंट आईटीआई में संपर्क करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आईटीआई से जो व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, जो तकनीकी ज्ञान मिलता है, वो आपको आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है, आपके लिए रोजगार, सरकारी जॉब और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं खोल देता है।
1: वानखेड़े जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज आपने बताई वो हमारे सभी युवाओं के लिए काम की होंगी और आज जो आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।
2: साथियों, अपेक्षा है कि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा क्योंकि आपके लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कार्यक्रम को कंटिन्यू करते हुए अब हम बढ़ते हैं अगले अंक की ओर, जिसमें वसुंधरा में जानेंगे बारिश के पानी को बचाने का महत्व। लेकिन इसके पहले लेते हैं हम म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, आज एक ऐसे विषय की बात कर रहे हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ है। वसुंधरा में है बारिश के पानी को बचाने का महत्व। प्रिय युवा श्रोताओं, जब भी बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमें जीवन का उपहार दे रही हो। वर्षा का जल केवल खेतों को ही नहीं सींचता, बल्कि नदियों, तालाबों, कुओं और भूजल स्रोतों को भी जीवन प्रदान करता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम वर्षा के इस अमूल्य जल को संरक्षण के बजाय यूं ही बहा देते हैं। परिणाम स्वरूप गर्मियों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होने लगती है और कई क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या गंभीर रूप ले रही है। दोस्तों, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का बहुत छोटा हिस्सा ही मीठे पानी के रूप में हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और जल के अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में वर्षा जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। यदि हम बारिश के पानी को संग्रहित करें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथियों, बारिश का पानी बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है वर्षा जल संचयन, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत घरों, विद्यालयों, कार्यालयों और अन्य भवनों की छतों पर गिरने वाले पानी को पाइप के माध्यम से टंकियों या भूजल पुनर्भरण संरचनाओं तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी का संग्रहण भी होता है और भूजल स्तर भी बढ़ता है। श्रोताओं, यदि हम अपने आसपास नजर डालें तो पाएंगे कि पहले गाँव में तालाब और कुएं वर्षा का जल संग्रहण के प्रमुख साधन हुआ करते थे। लोग पानी के महत्व को समझते थे और उसका संरक्षण करते थे। आज आधुनिकता के दौर में हम इन पारंपरिक जल स्रोतों को भूलते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप अनेक जल स्रोत सूख चुके हैं। हमें अपनी पुरानी परंपराओं से सीख लेते हुए आधुनिक तकनीकी के साथ जल संरक्षण को अपनाना होगा। प्रिय साथियों, जल संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं, यह हम सभी का कर्तव्य है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, स्कूल या कार्यस्थल पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करे तो लाखों लीटर पानी बचाया जा सकता है। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, युवा शक्ति इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। युवा अपने परिवार और समाज को जल संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों में जल संरक्षण अभियान चला सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। जल है तो कल है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि यदि आज हमने वर्षा जल का संरक्षण नहीं किया तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए हमें अभी से जागरूक होकर कदम उठाने होंगे। वर्षा की प्रत्येक बूंद अनमोल है और उसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो साथियों, अब समय हो चुका है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कल के आकर्षण। कल के आकर्षण में आज की बात का विषय होगा खेलो और स्वस्थ रखे तन और मन। खेल परिक्रमा होगा, स्तंभ में इस सप्ताह का इतिहास होगा और कुछ होंगे तलमे गीत। साथियों, अब समय हो चुका है कार्यक्रम की समाप्ति का, तो दीजिए अनुमति आपकी दोस्त मिनी मालवी को। जय हिंद, शुभ संध्या।

श्रोताओं, समय है आपको आज के कुछ मुख्य आकर्षणों से अवगत कराने का। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली। 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत और कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे 6:50 पर। 7:20 पर किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे, जिसमें आज की बात का विषय होगा अपने गांव की लोक कला को संजोए रखें। साथ ही सामूहिक कृषि चर्चा का विषय रजनीगंधा, सुगंधित पुष्प और किसानों की नगद आय का साधन। होगी भेंटवार्ता, बाजार भाव और सुनेंगे कुछ लोकगीत। रात 8:00 कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ और आज रात 8:30 आकाशवाणी बैतूल से आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य सरिता, जिसमें आज आप सुनेंगे बैतूल के जाने माने कवि जगदीश धुर्वे जी से श्री प्रवीण चौरे जी की बातचीत। रात 10:00 कार्यक्रम मेरी पसंद और 10:25 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब नजर डालते हैं कल यानी गुरुवार प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी सभा आरंभ होगी 5:53 पर। 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। 6:30 पर कार्यक्रम चिंतन और 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान। कार्यक्रम लोकरंजनी आप सुनेंगे 6:45 पर और क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से यह होगा 7:20 पर। पर होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे और 8:30 आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। सुबह 10:00 आकाशवाणी भोपाल से ही आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और 10:05 पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10:35 पर होगा महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज की बात का विषय होगा खेल, रचनात्मकता और बच्चों का विकास। साथ ही श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे बच्चों में खेल और रचनात्मकता, इस विषय पर खेल प्रशिक्षक से बातचीत। 5:30 शाम को होगा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा खेले और स्वस्थ रखे तन और मन, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। साथ ही श्रृंखला होगी खेल परिक्रमा और स्तंभ इस सप्ताह का इतिहास। शाम 6:05 पर कार्यक्रम माटी के स्वर और 6:30 कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7:20 पर होगा किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी। 8:00 कार्यक्रम गाने नए पुराने, 8:30 पर कार्यक्रम रेडियो के हम सफर और 10:25 पर सरकार के 12 वर्ष साइंस एंड टेक के पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित, जिसका विशेष श्रृंखला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कल रात 10:25 पर। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के और कल की सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गोधूली।

0: सात सुरों का बहता सागर सबको कराए।
1: कार्यक्रम गोधूली में आज के कलाकार हैं अनुप जलोटा।

कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

इस भक्तिमय रचना के साथ ही कार्यक्रम गोधूली यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

इस भक्तिमय रचना के साथ ही कार्यक्रम गोधूली यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना कच्चे धागे फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और कुमार सानू की थी। आपने ट्यून किया है कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत सुने उसके पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान जारी अभियान की जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेंद्र परहाते, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141234722 या 231944 पर फोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार फिर सुने। 11 जून 2026 गुरुवार शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर है 234722 या 231944। बैतूल का एसटीडी कोड है 07141। सूचना समाप्त हुई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से आवाज पलक मुच्छल की।

0: That could be just one is a 30.
1: अभी आपने सुना पलक मच्छल की आवाज में ये प्यारा सा गीत द धोनी अनटोल्ड लव स्टोरी से। इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने, संगीत निर्देशन अमाल मलिक का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

सोनू निगम की आवाज, बोल समीर के, संगीत जतिन ललित का। फिल्म संघर्ष के इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं ये भजन।

इस गजल के बाद आइए सुनते हैं। आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सबरस, अभी आपने सुना ये भजन, आइए सुनते हैं अब ये गैर फिल्मी गीत।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सब रस यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वो भी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। शाम को श्री मोदी ने भारत मंडपम में भाजपा एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल के लाल घाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व प्रार्थना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान हनुमान से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में

0: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने देश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और केवल यही नहीं, उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हिन्दुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार इस देश का नेतृत्व करते रहे, इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम का हमने आयोजन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार बैठक का विषय विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में समावेशी मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों मानव पूंजी, रोजगार, स्वास्थ्य एवं पोषण और सभी के लिए समानता पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल विचार विमर्श करेंगे। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने आज ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद योजनाओं के तहत प्रदर्शित उत्पादों में रुचि दिखाई। रीवा के जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम और अन्य किस्म का स्वाद लेकर प्रतिनिधियों ने उनकी गुणवत्ता की सराहना की। मंडला की मिलेट क्वीन लहरीबाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। मृगनेली, प्राकृत शिल्क, हेम्प क्लोदिंग के स्टॉलों पर प्रदर्शित पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की भी मेहमानों ने प्रशंसा की। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में कथित अनियमितताओं के आधार पर कल खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 10 वर्षों में रतलाम जिले में हजारों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्राप्त हुआ है। पेश है हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव पूर्ण जांच और सुरक्षित मातृत्व देने का अभियान रतलाम जिले में भी 10 साल पूरा कर चुका है। अब तक हजारों माताओं और नवजातों को इस योजना से नवजीवन मिला है। रतलाम के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% प्रसव पूर्ण जाँच का लक्ष्य सफलतापूर्ण हासिल भी किया जा रहा है। विशेषकर आदिवासी अंचल में समय रहते उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनके कार्ड पर लाल स्टीकर भी लगाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रसव के 45 दिन बाद तक निरंतर फॉलो अप और महीने की 9, 8 और 27 तारीख को महिलाओं को लैब टेस्ट पूरी तरह निशुल्क हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि पिछले 5 सालों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में अच्छी कमी आई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। इस खास मौके पर पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी कुल सचिवों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्हें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। यह नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत

वर्ष से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये नियम साल 2001 में लागू हुआ था, जिसके तहत दो से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में नहीं रह सकेगा। जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उप सरपंच बन जाएगा, वहां से भी तबादला अनिवार्य होगा। वहीं 10 साल या उससे अधिक समय से एक ही पंचायत में जमे सचिवों को प्राथमिकता से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5,39,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 74,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। ये जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर तथा दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर भाजपा विधायक अरविंद पटेलिया के साथ पूजा अर्चना एवं कन्या पूजन किया। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत शहडोल जिले में जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों के पंजीयन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। मंदसौर में 132.67 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक जिला जेल के निर्माण को अंतिम स्वीकृति मिल गई है। समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल खंडवा में आयोजित की जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना परिसर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 50 ग्राम कोटवारों को पुलिस की कार्यप्रणाली, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। और कटनी में छात्रों की सुरक्षा एवं बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले की जर्जर एवं मरम्मत योग्य 82 शालाओं का कायाकल्प किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा।

राम राम किसान भाइयों, मैं प्रहलाद भूमरकर स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा में। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हमेशा नई नई जानकारी देने का प्रयास करते हैं, और इसी प्रयास में हमारा आज का भी कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत हम करेंगे आज की बात से और करेंगे कृषि चर्चा। मनोरंजन में होंगे कुछ लोकगीत और सुनाएंगे आपको हमारे आज के मेहमान से की हुई भेंटवार्ता, जिसमें विषय है पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पंप, और अंत में बताएंगे आपको आज के बाजार भाव। तो बने रहिए अब से ठीक 8 बजे तक हमारे साथ, और अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम आज की बात से, जिसमें हमारा विषय है अपने गांव की लोक कला को संजोए रखें। साथियों, आज हम बात करेंगे अपने गांव की लोक कला की, अपनी माटी की। भाइयों, अपना गांव सिर्फ खेत और खलियान से नहीं बनता है, गांव बनता है अपनी बोली से,

अपने गीत से, अपने नाच गाने से और अपनी कला से, यानी लोक कला से। लोक कला मतलब हमारे लोगों की कला, जो हमारे दादा दादी के समय से चली आ रही है। ये लोक कला कोई स्कूल कॉलेजों में नहीं सीखी जाती, ये सीखी जाती है घर के आंगन में, दादा दादी से, नाना नानी से, माँ की लोरी से, मेले की भीड़ से, खेत की मेड़ से। आपने देखा होगा जब गांव में शादी ब्याह होती है तो दादियाँ नानियाँ कैसे सुंदर सुंदर लोकगीत गाती है, फसल कटने पर कैसे ढोल मंजीरे बजते हैं, होली दिवाली पर कैसे भगोरिया नाच होता है। तो भाइयों, यही तो है हमारी लोक कला, यही हमारी पहचान है। हमारी लोक कला ही हमारे गांव का असली आधार कार्ड है। बैतूल जिले की अगर हम बात करें तो हमारे आदिवासी भाइयों का सैला नाच, कर्मा नाच, ढोल मांदल की थाप, ये सब कितनी अनमोल चीजें हैं। निमाड़ में गणगौर, मालवा में लावणी और बुंदेलखंड में राई नाच, भाइयों यही तो है हमारी धरोहर। हमारे देश की प्रमुख लोक कलाओं की अगर हम बात करें तो बिहार की मधुबनी, महाराष्ट्र की वर्ली और राजस्थान की फण पेंटिंग, ये हमारी प्रमुख चित्रकलाएं हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना और टोकरी बुनना, ये हमारी हस्तकला में प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा राजस्थान का घूमर नाच, कालबेलिया और विभिन्न क्षेत्रों के लोकगीत, ये सभी हमारी लोक कला के प्रमुख उदाहरण हैं। भाइयों, लोक कला को संजोना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सांस्कृतिक जुड़ाव है। इसमें केवल दिखावटी सजावट नहीं है बल्कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी कलात्मक रूप दिया जाता है। और सबसे खास बात, इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे मिट्टी, प्राकृतिक रंग, बांस और लकड़ी। लोक कला पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, इसे किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं सीखा जा सकता बल्कि यह हमारे परिवार और समाज के बीच स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। भाइयों, लोक कला किसी भी समाज की आत्मा होती है जो पीढ़ियों की विरासत है। लोक कला हमारी आस्था और जीवन शैली को दर्शाती है। इसे संजोकर रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने स्थानीय कलाकारों को महत्व दें, उन्हें प्रोत्साहित करें और यह सुनिश्चित करें कि वे कला के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके और अपनी कला को आगे बढ़ा सके। हमें प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए जिससे हम उन्हें अपनी लोक कलाओं के बारे में और अधिक सिखा सके। लोक कला महोत्सव का आयोजन हमें करना चाहिए जहां हम अपनी लोक कला का प्रदर्शन करने के लिए लोक कलाकारों को मंच दे सके। किसान भाइयों, आप सब भलीभांति जानते हैं कि यदि हम किसी पेड़ को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएगा और यदि लोक कला को हम मंच नहीं देंगे तो वह नष्ट हो जाएगी। लोक कला को संजोना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बात, इसे अब हम यहीं विराम देते हैं और कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं रामचरण यादव और साथियों की आवाज में ये लोक भजन।

किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे रामचरण यादव और साथियों की आवाज में लोक भजन कार्यक्रम में। अब समय है कृषि चर्चा का। तो किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे सुंदर फूल की बात करेंगे जो सिर्फ खुशबू ही नहीं देता बल्कि हमारे किसान भाइयों की जेब भी भरता है, क्योंकि फूल वही है जो सबके जीवन को महकाए, जिसकी खुशबू रात को और भी बढ़ जाती है, जिसका नाम सुनते ही शादी विवाह मंदिर और त्योहारों की याद आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनीगंधा की। रजनी मतलब रात और गंधा मतलब खुशबू, यानी रात में महकने वाला फूल। इसके सफेद रंग के लंबे डंठल पर छोटे छोटे फूलों के गुच्छे लगते हैं और इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि एक डंठल पूरे कमरे को महका देता है। लेकिन साथियों, रजनीगंधा सिर्फ सुंदरता और खुशबू के लिए नहीं जाना जाता, ये आज हमारे किसान भाइयों के लिए नगद फसल और कैश क्रॉप बन चुका है। रजनीगंधा किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद कर रहा है, इस बारे में हम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तो सबसे कम समय में ज़्यादा कमाई देता है। जहां गेहूं और धान की फसल में 4 महीने का समय लगता है, वहीं रजनीगंधा केवल 3 महीने के बाद ही फूल तोड़ने लायक हो जाता है, और एक बार इसे लगाने पर 2 से 3 साल तक यह फूल देता है, यानी बार बार जुताई और बीज का खर्च नहीं होता है। दूसरा, इसकी मांग साल भर होती है। रजनीगंधा 12 महीने इसकी मांग बनी रहती है, शादियों का सीजन हो, नवरात्रि हो, सावन का महीना हो, या रोज मंदिर में चढ़ाना हो, फूल हर दिन बिकता है। और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी मंडियों में इसके रेट 100 से 400 रुपये प्रति किलो तक रहते हैं। और तीसरा, इसका जो प्रमुख कारण है, कम जमीन में ज़्यादा मुनाफा। जो किसान भाई अभी इसकी खेती कर रहे हैं उनके अनुसार एक एकड़ में जब हम रजनीगंधा लगाते हैं तो साल भर में 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। खर्चा निकाल भी दे तो 2.5 से 3 लाख का शुद्ध मुनाफा बच सकता है। हमारे जो छोटे किसान हैं जिनके पास में 1-2 बीघा जमीन है, उनके लिए ये वरदान साबित हो सकती है। और चौथा प्रमुख

0: कारण इसका यह है कि फैक्ट्रियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। रजनीगंधा सिर्फ माला बनाने के काम नहीं आता, इसकी खुशबू से महंगे परफ्यूम, अगरबत्ती, साबुन और इत्र भी बनते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियां किसानों से सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, यानी अगर हमारा किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो हमें बाजार में बेचने की भी टेंशन नहीं रहेगी। किसान भाइयों, रजनीगंधा की ये खेती कैसे करें? अगर हम इसकी खेती करना चाहें तो इसकी खेती बहुत ही आसान है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी चाहिए और ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसमें होती नहीं है। इसके कंद को लगाया जाता है और जब एक बार इसका कंद लगा दिया जाता है तो हर 3 से 4 महीने में नए कंद खुद बन जाते हैं, यानी अगली बार बीज खरीदना हमें नहीं पड़ता है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान इसे बड़े स्तर पर उगा रहे हैं, लेकिन अब हमारे मध्य प्रदेश के किसान भी इसे अपना रहे हैं। सरकार भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इसकी खेती पर सब्सिडी दे रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन रजनीगंधा जैसी फसलें साबित करती है कि अगर हमारे किसान भाई समझदारी से फसल चुने तो खेती सबसे बड़ा मुनाफे का धंधा हो सकता है। इसलिए मैं सभी युवा किसानों से कहना चाहूँगा कि पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती भी करें और रजनीगंधा को लगाएं। किसान भाइयों, ये हमारी एक छोटी सी चर्चा थी, कृषि चर्चा, जिसमें हमने बातचीत करी रजनीगंधा के ऊपर। और कार्यक्रम में अब समय है आज की भेंटवार्ता का, जिसमें हम आपको मिलाएंगे श्री राजा यादव जी से और उनसे बातचीत करेंगे पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप पे। राम राम किसान भाइयों, आज हम आए हैं ऊर्जा विकास निगम कार्यालय बैतूल में, जहां हमसे बातचीत करेंगे श्री राजा यादव जी। और उनसे बातचीत का विषय है पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पंप लगवाने संबंधित। तो राजा यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी। मेरा नाम राजा यादव है और वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के बैतूल कार्यालय में पदस्थ हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: यादव जी, जैसे कि आजकल सभी लोग बोल रहे हैं, काफी सुनने में आता है कि सोलर ऊर्जा ना सिर्फ समय की मांग है बल्कि एक समझदारी भी है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
1: बिल्कुल, ये सिर्फ समय की मांग ही नहीं, हमारे आने वाले फ्यूचर की बहुत बड़ी मांग भी होने वाली है। क्योंकि सौर ऊर्जा बोले तो एक फ्री में जो हमें एनर्जी मिल रही है और रोज आती है, रोज जाती है, इसका हमारे दैनिक जीवन में हमें बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। और इसका फ्यूचर सभी जान ही रहे हैं कि ईवी का जमाना आ गया है, सौर ऊर्जा से बहुत सारी चीजें होने लगी है। तो सौर ऊर्जा को लेके काफी पॉजिटिविटी का माहौल भी बन रहा है, सरकार भी इसको लेके काफी अग्रेसिव मोड में काम कर रही है, सबको इसका बिल्कुल लाभ लेना चाहिए।
0: जी। और जैसे अगर हमारे किसान भाई अपने खेत में सोलर पंप लगवाना चाहें तो क्यों सोलर पंप डीजल पंप से और बिजली वाले पंप से अधिक बेहतर समझा जा रहा है?
1: बिल्कुल, जहां तक डीजल पंप और बिजली वाले पंप की बात की जाए तो पहली बात तो ये है कि डीजल पंप बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है किसान भाइयों के लिए। ऊपर से मौसम की मार और ये बाकी महंगाई, तो इन वजह से उसकी जो उपज भी होती है उसका सही दाम उसे नहीं मिल पाता है और ज्यादा उसकी लागत होने के कारण मुनाफा कम होता है। और बिजली वाले पंप में भी वही है कि उसको रेगुलर अगर परमानेंट बिजली कनेक्शन भी है तो उसको बिजली बिल का भुगतान तो करना ही रहता है। लेकिन वहीं इन दोनों की अपेक्षा का सोलर पंप की बात की जाए तो सोलर पंप के बहुत सारे फायदे हैं अगर कोई किसान भाई लगवाना चाहे तो। जैसे अगर कोई सोलर पंप का लगवाना चाहता है या लगाता है तो पहली बात तो यह है कि उसको दिन दिन में सिंचाई करने का मौका मिलता है। लगभग 7 से 8 घंटे वो दिन दिन में सिंचाई करके रात के समय अपने घर में आराम से सो सकता है। और एक बार लगवाने के बाद में कोई उसमें मेंटेनेंस नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है और लंबी अवधि के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। और खासकर ऐसे किसान भाइयों के लिए जहां पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, दूर दूर तक बिजली का कोई नामो निशान नहीं है, उन किसान भाइयों के लिए तो ये वरदान साबित हो रहा है। तो सोलर पंप का जरूर उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए।
0: और सर जी, अभी ये पीएम कुसुम योजना की काफी बातें सुनने में आ रही है, काफी चर्चा में ये योजना है,

0: जो किसान भाइयों के लिए सोलर पंप के लिए बनाई गई है, तो इस योजना की विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए।
1: बिल्कुल, किसान भाइयों के लिए ये जो प्रधानमंत्री कुसुम मित्र योजना लाई गई है, ये वाकई में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना एक्चुअल में केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार ने ही इसका नाम पीएम कुसुम योजना दिया हुआ है। अपने मध्य प्रदेश में यह योजना पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से चलाई जा रही है, और यह स्कीम बहुत अच्छी है। और इस स्कीम के तहत ऐसे किसानों को लाभान्वित किया जाना है जहां जिनके पास में विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे पात्र हितग्राहियों को ढूंढकर उन्हें लाभ दिया जा रहा है।
0: इस योजना में सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी दी जा रही है और हमारे किसान भाइयों को अपनी जेब से कितना देना पड़ता है, इस विषय में बताइए।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्रभावी योजना है ये मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र सरकार की। इसमें जो अनुदान की राशि है वो 90% सरकार दे रही है। इसमें एचपी वाइज सब कैटेगरी में अलग अलग है, 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP तक का अनुदान दे रही है। उदाहरण के लिए हम 3 HP के सोलर पंप की बात करें तो उसकी बाजार में कीमत आज 2,09,000 रुपए के आसपास में है। तो उसमें किसान भाई को सिर्फ 10% पैसा अपने जेब से देना है, मतलब 2,10,000 में से किसान भाई को 21,000 रुपए देना है, बाकी उसको 1,80,000, 1,90,000 के आसपास पूरा अनुदान दे रहा है। इसमें किसी प्रकार का उसको अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि सर कि काफी बड़ी सब्सिडी इसमें हमारे किसान भाइयों को मिलने वाली है। और इसके अलावा सर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर जैसे हमारे किसी किसान भाई के पास में दो खेत है और वो अलग अलग जगह पर है और उसे दोनों जगह ही सोलर पंप लगवाने की आवश्यकता है, तो क्या ऐसे में उसको दो सब्सिडी मिल सकती है?
1: बिल्कुल, ये जानकारी किसान भाइयों को देना चाहूंगा इस बारे में। अगर किसी किसान भाई के पास में दो खेत है तो वो एक खेत में आवेदन करने के लिए पात्र होगा, क्योंकि इसमें आधार बेस्ड आवेदन होते हैं। तो वो जो पोर्टल ऑनलाइन जब आवेदन लेता है तो वो एक आधार को एक ही बार लेता है। अगर किसान भाई के दो खेत है तो उसको एक खेत किसी अपने परिवार के अन्य सदस्य के नाम से ट्रांसफर करके वो दूसरे सोलर पंप के लिए अप्लाई कर सकता है।
0: और हमारे किसान भाइयों के पास में अगर सोलर पंप लगवाना है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कितनी जमीन की आवश्यकता होती है, क्या उसमें बिजली कनेक्शन जरूरी है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सोलर पंप लगवाने के लिए बहुत प्रमुख बिंदु है कि किसान भाई के लिए क्या आवश्यक चीजें या क्या आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए और क्या तकनीकी जानकारी उन्हें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। सोलर पंप लगवाने के लिए किसान भाई का अपना स्वयं का खेत होना चाहिए, और उस खेत में पानी का स्रोत होना चाहिए, कुआ, बोर, नहर, तालाब, जो भी व्यवस्था हो उसकी। जमीन का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, जितना भी जमीन है उसके लिए वो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग एचपी के लिए आवेदन कर सकता है। और इसमें एक चीज खास मैं ये बताना चाहूंगा कि सोलर पंप योजना में शासन की तरफ से जो अधिकतम गहराई तय की गई है वो 100 मीटर हेड तय की गई है। अगर 100 मीटर हेड तक किसी किसान भाई के बोर में पानी है तो वो इसके लिए पात्र है और वो आवेदन कर सकता है। 100 मीटर में मोटा मोटा अपन 125 फीट तक मान सकते हैं कि उतनी गहराई तक वो इसका पानी निकालने का लाभ ले सकता है। तीसरी चीज इसमें है बिजली कनेक्शन होना है क्या जरूरी, आपने पूछा था। तो वर्तमान में जो सोलर पंप के आवेदन हो रहे हैं या हुए हैं उसमें शासन की मंशा ये है कि ऐसे किसान को शामिल किया जाए जिनके पास में बिजली से सिंचाई करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, दूर दूर तक कोई बिजली के तार वगैरह नहीं गए हैं, वो डीजल इंजन का उपयोग कर रहे हैं और उनकी जो लागत है और ज्यादा बढ़ रही है इस वजह से। तो ऐसे किसानों को ही लाभान्वित किए जाने का उसमें प्रावधान है कि जिसके पास में विद्युत का परमानेंट कनेक्शन, स्थायी कनेक्शन ना हो। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, जिनके पास में टेम्परेरी कनेक्शन है, जो किसान भाई 3 माह 6 माह के लिए अस्थायी कनेक्शन लेते हैं वो भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और इसके अलावा ये हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे वो आवेदन करेंगे, क्या वो खुद अपने आवेदन को भर सकते हैं या उन्हें ऊर्जा विकास निगम के ऑफिस जाना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब ऑनलाइन आवेदन चालू होते हैं तो बहुत सारे किसानों भाइयों के मन में डर रहता है कि फर्जीवाड़ा होता है आजकल, ये होता है, बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठते हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन किसान भाई कहीं से भी आवेदन कर सकता है,

0: लेकिन आवेदन करते समय कुछ तकनीकी जानकारी उसमें पूछी जाती है ऑनलाइन आवेदन में, तो वो थोड़ी सावधानी पूर्वक भरवाई जानी चाहिए। जैसे सोलर पंप की क्षमता का चयन और उसकी गहराई का चयन, ये कुछ बिंदु उसमें होते हैं जो तकनीकी पहलू में आते हैं, क्योंकि तो वो एक बार अगर उसने फिट कर दिया तो उसको चेंज कराना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अगर अधिक अगर उसको कोई जानकारी अगर चाहिए होती है तो हमारे कार्यालय में वो बिल्कुल आ सकता है। और कोई समस्या अगर किसी प्रकार के आवेदन भरने संबंधी उसको अगर कोई डाउट्स रहते हैं मन में या कोई समस्या आ रही है, तो वो भी यहाँ हमारे कार्यालय आके उन डाउट्स का पूरा क्लियर करा सकता है कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है, इसको कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम उनको कार्यालय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कैसे तकनीकी जानकारी उसमें डाल सकते हैं। उसके लिए हमारे विभाग की तरफ से उसका एक पोर्टल बनाया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं तो कुछ भी दूसरे पोर्टल्स वगैरह ऊपर उन जाते हैं। तो वेबसाइट भी इसमें मैं बताना चाहूंगा, सोलर पंप योजना के लिए आवेदन भरने के लिए वेबसाइट है cmsolarpump.mp.gov.in। एक बार मैं और रिपीट करना चाहूंगा, सोलर पंप योजना के लिए आवेदन भरने की वेबसाइट है cmsolarpump.mp.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके किसान भाई जब पोर्टल चालू रहता है तब वहां जाके अपना ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकता है। बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल सर, आपने अच्छी जानकारी दी कि फर्जीवाड़े से बचने के लिए इस पोर्टल से ही आवेदन उन्हें करना है। और सर ये बताइए कि जैसे कई बार जब सोलर पंप हम खरीदते हैं तो उसके लिए किसी कंपनी का हमको चुनाव करना होता है, तो उसके चुनाव में हमें किस तरह की सावधानियां रखनी है ताकि हमें खराब क्वालिटी के पैनल न मिले और सही पैनल हमें मिले इसके लिए।
0: बिल्कुल, किसान भाइयों को इसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जब ऑनलाइन आवेदन भरा जाता है तो उसमें हमारे विभाग में ऑनलाइन टेंडर के बाद, निविदा के बाद में जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, वो सारी कंपनियां जो है एमएनआरई की गाइडलाइन के हिसाब से ही अपना काम पूरा करती है। और एमएनआरई जो केंद्र सरकार का विभाग है, उसने पॉलिसी बना रखी है कि किस किस पॉलिसी के अंतर्गत योजना में कंपनियों को शामिल करना है और क्या क्या सामग्री वो प्रदान किए जाएंगे। तो जितनी भी कंपनियां यहाँ पे हमारे विभाग में रजिस्टर्ड होती है वो किसी का भी स्वतंत्र रूप से चयन कर सकता है। और इसमें सावधानी बरतने वाली वही चीज होती है कि वो जो वेबसाइट है वो सही वेबसाइट हमारे विभाग की, जो हमने पिछले बिंदु में बात की थी, उस वेबसाइट पे जाके आवेदन करें। और वहां पे जो भी उसे कंपनी सिलेक्शन का विकल्प मिलता है उसमें से किसी की भी कंपनी का वो चुनाव करके सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकता है।
1: और सर ये जो सोलर पैनल जो लगवाते हैं इसकी कितने साल की गारंटी होती है?
0: जी बहुत बढ़िया सवाल है ये। सोलर पंप जो लगाए जा रहे हैं इसमें जो शासन की गाइडलाइन है उसके तहत 5 साल की गारंटी रहती है। 5 साल तक किसी प्रकार की कोई समस्या यदि किसान को आती है, तकनीकी प्रॉब्लम, तो वो जो इकाई का उनने सिलेक्शन किया है, जिस कंपनी का सोलर पंप लगेगा उनके यहाँ पे, उनका उनका और हमारे विभाग का दायित्व होता है कि उसके सोलर पंप को 5 साल तक किसी भी तकनीकी खराबी आने पर ठीक करके दिया जा सके। बिल्कुल,
1: और मान लो अगर किसी का सोलर पैनल 5 साल के बाद में खराब होता है या उस पर कोई कचरा जम जाता है या जैसे हवा पानी चलती है इससे अगर वो टूट जाता है तो उसका मेंटेनेंस किस तरह से करना पड़ता है?
0: बिल्कुल, किसान भाइयों को इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अगर 5 साल के अंदर अगर आंधी तूफान, अगर प्राकृतिक आपदा से अगर किसी प्रकार की उसको क्षति पहुंचती है तो उसका इंश्योरेंस होता है सोलर पंप का, किसी भी कंपनी का उसने चुनाव किया हो। 5 साल तक ये इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर टूट फूट जो होती है उसके सोलर पैनल में, उसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होती है और जो कंपनी वाला है वो ठीक करा के देता है उसे। और साफ सफाई के बारे में ये जानकारी देना चाहूंगा कि जो उसपे धूल वगैरह मिट्टी वगैरह बैठ जाती है उसे किसान भाई को ही अपने एंड से बीच बीच में हर हफ्ते सुबह के समय में, जब तेज धूप उसके ऊपर प्लेटों पे नहीं आ रही हो, तब उसको साफ करते रहना चाहिए ताकि जो उसमें पावर जनरेशन का काम होता है वो प्रॉपर लगातार ठीक तरह से होता रहे, ताकि उसका परफॉर्मेंस ना गिरे।
1: जी, आपके हिसाब से हमारे बैतूल जिले के जो किसान भाई है उनको 1 एकड़, 5 एकड़ या 10 एकड़ वाले जो किसान भाई है उनके लिए कौन सा सोलर सिस्टम

0: सही रहता है।
1: हाँ, इसके लिए मैं किसान भाइयों को सुझाव देना चाहूंगा कि जो 1 एकड़ के किसान भाई हैं या 1 हेक्टेयर से जिनका रकबा कम है, उन्हें 3 HP से 5 HP के बीच में सोलर पंप का चुनाव करना चाहिए। और 1 हेक्टेयर से ज्यादा जिनका रकबा है, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, उनको 5 HP या 7.5 HP में पानी की उपलब्धता के हिसाब से सोलर पंप का चुनाव करना ठीक रहेगा।
0: और ये सोलर पैनल जो हम लगाते हैं, तो ये कितनी जमीन घेरती है? क्या इससे हमारे किसान भाइयों के फसल उत्पादन पर कोई असर पड़ता है, या इस पैनल के नीचे वो कुछ और भी उगा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, इस बारे में किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम खेत में सोलर पंप लगवाते हैं तो ज्यादा जमीन घेरती नहीं है, क्योंकि पहले जो सोलर पैनल आते थे वो कम वाट के आते थे, आजकल तो 500 वाट से ज्यादा के पैनल आने लगे हैं। तो 1 HP में, 1 HP के मान से अपन 100 स्क्वायर फीट जगह का आकलन कर सकते हैं, तो ज्यादा जगह नहीं लग सकती है। अब 10 बाई 10 की जगह में 3 HP का सेटअप लग जाता है, और उसके हिसाब से अगर 5 HP का है तो थोड़ी और जगह उसमें लगती है। दूसरी चीज इसमें यह बताना चाहूंगा कि जब अगर हमारा पैनल लगा हुआ है तो उसके नीचे हम किसी भी प्रकार की कोई भी फसल, जो उसको उतनी ऊंची, जो कम ऊंचाई वाली फसल है, पैनल तक ना पहुंचे, ऐसी किसी भी प्रकार की फसल का हम उत्पादन भी ले सकते हैं। और खासकर ऐसी फसल जिनको ज्यादा धूप की आवश्यकता नहीं हो, वो फसल को हम आराम से वहां पे उत्पादन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये बात बताई कि उस जगह का उपयोग भी हम कर सकते हैं, वहां पे जिस फसलों को धूप की ज्यादा आवश्यकता ना हो, ऐसी फसल हमारे किसान भाई वहां आसानी से ले सकते हैं। आजकल सर, फर्जी फोन लोगों को काफी आ रहे हैं, इस तरह से सुनने में आ रहा है कि सब्सिडी दिलवा देंगे, 10,000 दे दो, 5,000 दे दो। तो ऐसे फ्रॉड किसान भाई लोगों के साथ में होने की काफी संभावना रहती है, इनसे बचने के लिए उन्हें किस तरह की सावधानी अपनाने की जरूरत है?
1: बिल्कुल, ये बहुत ही गहन चिंता का विषय है, और इसके लिए किसान भाइयों को हमेशा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी योजना जब संचालित होती है तो उसके पीछे में निगेटिविटी भी फैलती है और भ्रामक जानकारियों का भी प्रचार प्रसार होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो बड़े सजग तरीके से और उन्हें आवेदन करने से लेकर सोलर पंप लगने तक पूरी जानकारी योजना के बारे में होना चाहिए। पहली बात तो कि कैसे आवेदन करेंगे, कहाँ से लाभ मिलेगा, क्या क्या कार्रवाई उसमें हमें पूरी कराना रहेगा, इसकी पूरी जानकारी उसे पहले होना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे सोलर पंप का पोर्टल में जब वो किसान भाई आवेदन करता है, उसमें आवेदन का जो प्रिंट आउट निकलता है उसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी रहती है। तो किसान भाइयों को मैं यही सुझाव देना चाहूंगा इस बारे में कि पहले उन बिंदुओं को पहले पूरी अच्छी तरीके से वो पढ़ लें कि किस तरह से आवेदन करने के बाद उसमें समय समय पे उन्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इन चीजों को अगर वो एक बार पढ़ लेगा तो ये जो फर्जी वाले जैसी चीजें हैं उनसे बच पाएगा। दूसरी चीज, अभी हमारा वर्तमान में पोर्टल बंद है, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों का फोन आता है कि सर हमारे इधर तो आवेदन हो रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बंद है। तो ऐसे केस में मैं बताना चाहूंगा कि अमूमन देखा जाता है कि किसान भाई या फिर अन्य कोई व्यक्ति गूगल पे या यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो या भ्रामक जानकारी देख लेता है और अनएक्सपेक्टेड जो लिंक दी रहती है उस पर क्लिक करता है, वहां पे किसी प्रकार की कोई जानकारी फीड कर देता है, और जो फर्जी वाला करने लिए फ्रॉड वेबसाइट है उनके पास जैसे ही आवेदन पहुंचता है, आवेदन सॉरी मोबाइल नंबर पहुंचता है, वो मोबाइल पे लगातार संपर्क बना के उनको, किसान भाइयों को लालच देना शुरू कर देता है कि हम आपका सोलर पंप का आवेदन करवा देंगे, इतनी सब्सिडी आपके खाते में डलवा देंगे, आप हमारे खाते में इतना पैसा डाल दीजिए, हम इतने दिनों में आपका सोलर पंप इंस्टॉल करवा देंगे, लगवा देंगे। इस तरह की लालच देकर वो फर्जी वाले का किसान भाइयों को शिकार बनाता है। तो इससे बचने का एक बहुत आसान तरीका मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, बैतूल में हमारा कार्यालय है, ब्लॉक लेवल में तो कोई कार्यालय नहीं है, लेकिन अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में वो विजिट कर सकते हैं या अपने किसी परिचित व्यक्ति को अधिक जानकारी के लिए वो भिजवा सकता है कि वास्तव में योजना के संबंध में क्या अभी चल रहा है, तो विभाग में आके वो सटीक जानकारी प्राप्त कर इस तरह के फर्जीवाड़ों से बच सकता है।
0: समय को देखते हुए अंत में आप हमारे किसान भाइयों को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, अंत में मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि सोलर पंप का जरूर वो लाभ लें, और ऐसे किसान भाई जिनके यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है या डीजल पंप का उपयोग करते हैं या टेम्परेरी की रसीद कटा के वो 3 महीने का अधिक बिजली का बिल भरते हैं, ऐसे किसान भाइयों को बिल्कुल निडर होके आगे आके आवेदन करना चाहिए। 100% सक्सेस सिस्टम है ये सोलर पंप, अब तो हमारे जिले में बहुत सारे सोलर पंप लग भी चुके हैं, वो अपने आसपास गांव में या फिर आसपास के अड़ोस पड़ोस के गांव में भी जाके उसका परफॉर्मेंस देख सकता है और उसका लाभ ले सकता है। इसके लिए अगर अधिक जानकारी किसी किसान भाई को चाहिए होगी तो इसका हमारे विभाग का टोल फ्री नंबर भी मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा। इसके लिए हमारे भोपाल मुख्यालय ऊर्जा विकास निगम का लैंडलाइन टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे वो कॉल करके संबंधित सोलर पंप कक्ष में बात करके किसी भी प्रकार के जो उसके क्वेश्चंस है उसके उत्तर ले सकता है। तो नंबर बताना चाहूंगा मैं 07552553595। हिंदी में भी मैं एक बार बता देता हूँ, 07552553595। थैंक यू
0: सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे राजा यादव जी से की गई बातचीत, और कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो आइए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं अभिराम बर्रे जी और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

किसान भाइयों, कृषि उपज मंडी से आज हमें मंडी भाव प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यही संपन्न करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। दीजिए अनुमति प्रहलाद भूमरकर को। राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहत की बात गीतों के साथ। श्रोताओं, स्वास्थ्य सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन की भी जरूरत है, और जब मन खुश हो तो सेहत अपने आप खिल उठती है। इसलिए हम लेकर आए हैं सेहत की बात गीतों के साथ कार्यक्रम, जहां होगी स्वास्थ्य की जानकारी और साथ ही होगी आपके पसंदीदा गीत। कहते हैं प्यार, अपनापन और सकारात्मकता भावनाएं ही नहीं हमारी मानसिक सेहत को भी मजबूत बनाती है। जब दिल खुश होता है तो जीवन की हर धड़कन में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म धड़कन का एक बेहद ही लोकप्रिय गीत।

यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं उसके पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना। आकाशवाणी बैतूल के लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी में एक विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण दिनांक 11 जून 2026 यानी गुरुवार को शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य किया जाएगा, जिसमें सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का विषय होगा खेत बचाओ अभियान की जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेंद्र परहाते, उप संचालक कृषि विभाग बैतूल। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 11 जून 2026 गुरुवार को शाम 7:20

0: 20 मिनट से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी बैतूल के फोन नंबर 07141234722 या 231944 पर फोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। 11 जून 2026 गुरुवार को यानी कल शाम 7:20 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर 234722 या 231944 यानी 234722 या 231944। बैतूल का एसटीडी कोड है 07141 यानी 07141। सूचना समाप्त हो ही श्रोताओं, अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बद्री की दुल्हनिया इस फिल्म से, और बात कुछ कर लेते हैं सेहत की। दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए सिर्फ पौष्टिक भोजन ही नहीं, अच्छे रिश्ते, अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। जब जीवन में कोई हो, ऐसा हो जिसे जो हमें भी समझे और हम उन्हें भी, हमारी परवाह करें, हम उनकी परवाह करें, तो तनाव कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। इसी प्यारे एहसास को बयां करता है हमारा अगला गीत फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम दे जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

दोस्तों, सेहत के बाद गीतों के साथ कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। कहते हैं जीवन में कुछ भावनाएं ऐसी होती है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। मन की शांति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने जज्बातों को समझना और उन्हें सही दिशा देना भी बहुत जरूरी है। इन्हीं अनकहे एहसासों और दिल की गहराइयों को खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला यानी अंतिम पेशकश। आतिफ असलम की मधुर आवाज में ये गीत आज भी हर दिल में बेहद करीब है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, तू जाने ना, फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से।

0: इस गीत के साथ का कार्यक्रम सेहत की बात गीतों के साथ यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य सरिता। आइए सुनते हैं बैतूल के जाने माने कवि जगदीश धुर्वे जी से श्री प्रवीण चौरे जी की बातचीत।
1: कार्यक्रम साहित्य सरिता सुन रहे सभी श्रोताओं को
0: ये कार्यक्रम सुनने से पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, स्वस्थ जीवन के लिए जितना जरूरी है अच्छा खान पान, उतना ही जरूरी है खुश रहना, जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में जीना। हंसी मस्ती और दोस्तों का साथ हमारे तनाव को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसी संदेश को बड़े ही मजेदार अंदाज में प्रस्तुत करती है हमारी अगली फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म 3 इडियट से। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां तो आएगी, लेकिन मुस्कुराकर उसका सामना करना ही असली कला है। तो आइए दोस्ती, मस्ती और जिंदगी के रंगों से भरा ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

कार्यक्रम सेहत के बाद गीत के साथ। इस कार्यक्रम में हम अक्सर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना भी उतनी ही जरूरी है दोस्तों। अच्छी नींद न केवल शरीर को आराम देती है बल्कि मन को भी तरोताजा रखती है, और जब नींद अच्छी हो तो सपने भी बड़े रंगीन और सुहाने आते हैं। ऐसे ही एक मजेदार सपने की कहानी को लेकर आया है हमारा अगला गीत, जिसमें किसी की याद सपनों में बार बार दस्तक देती है। तो आइए मुस्कुराहट और मस्ती से भरे इस गीत का आनंद लेते हैं। फिल्म सपनों में मिलती है ये आवाज, और फिल्म का नाम है सत्या। सुनिए यह शानदार गीत और याद रखिए, अच्छी नींद स्वस्थ जीवन की एक महत्वपूर्ण कुंजी है।

0: तो दोस्तों, सेहत के बाद गीत के साथ ये कार्यक्रम का सफर यही संपन्न हुआ। उम्मीद है स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारियों और मधुर गीतों का यह संगम आपको पसंद आया होगा। याद रखिए, स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन ही एक खुशहाल जीवन की पहचान है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, नियमित दिनचर्या अपनाएं, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखें। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ के साथ और आकाशवाणी बैतूल के साथ। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य सरिता। आइए सुनते हैं बैतूल के जाने माने कवि जगदीश धुर्वे जी से श्री प्रवीण चौरे जी की बातचीत।
1: कार्यक्रम साहित्य सरिता सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र प्रवीण चौरे का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में एक ऐसे रचनाकार है जिन्होंने कुछ अलग विषय पर अपने अनुभव और अपना अवलोकन अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी डायरी में दर्ज किया है और आज हमारे साथ साझा करने के लिए उपस्थित है। जगदीश धुर्वे जी, हमारे स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आपकी कविताओं से जुड़े इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो लेखन की शुरुआत है वो किस तरह से हुई।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जगदीश धुर्वे है और मैं कविताओं की रचना करता हूँ। ये कविता का शौक जो है 9th कक्षा के दौरान लगा था, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि जब मैं 9th कक्षा में था तो मैं छात्रावास में वहाँ पढ़ता था। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि जब हम विद्यार्थियों के साथ रहते हैं तो अलग अलग सबके विचार और मत होते हैं, तो उन मतों से आप सहमत हैं या नहीं हैं तो आपके अंदर एक द्वंद चलते रहता है। तो मेरे अंदर भी चलता था, तो मैंने उन द्वंद्वों से लड़ने के लिए कुछ रचनाएं रची। तो मैंने अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा की कि मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो उनको किसी को अच्छा लगता था, किसी को वो चीजें अच्छी नहीं लगती। फिर लिखने का जो क्रम है वो बढ़ता रहा, लेकिन मैं उनको कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करता था, क्योंकि एक मन में एक ग्लानी भाव भी रहता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो शायद किसी को पसंद आए कि नहीं आए। तो अब ये क्रम चलता रहा और मैं अपने विचारों को लिखते गया और इतने सालों के बाद मुझे मंच मिला तो मैंने इन कविताओं को रचनाबद्ध करते हुए अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसी में जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं या समसामयिक विषयों में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं या लोगों के विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है या समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो उनको देखते हुए मैंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसी क्रम में मैंने एक रचना लिखी, आजादी चाहिए। आजादी चाहिए ये इसलिए लिखा है, इसका ये शीर्षक इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि जो कर्मचारी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का, वो किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है, काम के कारण बंधा हुआ है या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बंधा हुआ है। किसान की अगर बात करें तो वो अपने आजीविका से बंधा हुआ है, विद्यार्थी हैं तो वो पढ़ाई के बोझ से दबे हुए हैं, सब अपनी अपनी किसी न किसी परेशानियों से बंधे हुए हैं या अपनी समस्याओं से बंधे हुए हैं।

0: ये अच्छी आपने बात बताई कि लेखन की शुरुआत आपकी इस तरह से हुई, और एक कवि के अंदर एक समाज की संवेदनाओं को सेंस करने के लिए एक सेंसर होता है
1: जी।
0: कवि समाज को ऑब्जर्व करता है और समाज की मजबूरियों का, बेबसी का, खामोशी का एक अनुवाद कर पाता है अपनी
1: जी
0: कला के माध्यम से और समाज तक उसको कलात्मक तरीके से पहुंचाता है।
1: जी जी
0: तो जैसा कि आपने आजादी की चर्चा की, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं से जुड़े और अपने स्वयं के शब्दों से अपने जो कविता का संदेश है वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं।
1: जी, मेरे द्वारा रचित एक कविता है जिसका शीर्षक है आजादी चाहिए। किसी को किसी से आजादी चाहिए, किसी को किसी से आजादी चाहिए, किसी को पढ़ाई से, किसी को परिणाम से आजादी चाहिए, किसी को रोजगार से, किसी को बेरोजगारी से आजादी चाहिए, किसी को अधिकारी से, किसी को कर्मचारी से, किसी को अधिकारी से, किसी को कर्मचारी से, किसी को मालिक से, किसी को नौकर से आजादी चाहिए, किसी को धन से, किसी को निर्धनता से, किसी को धन से, किसी को निर्धनता से, किसी को कर्ज से, किसी को कर्जदारों से आजादी चाहिए, किसी को प्रेमी से, किसी को प्रेमिका से, किसी को प्रेमी से, किसी को प्रेमिका से, किसी को पति से तो किसी को पत्नी से आजादी चाहिए, किसी को बेटे से, किसी को बेटी से, किसी को भैया से, किसी को बहन से आजादी चाहिए, किसी को माँ से, किसी को पिता से, किसी को सास से, किसी को ससुर से आजादी चाहिए। इसी क्रम में मेरी अगली कविता है, माँ मेरा संसार, मेरा धर्म भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा कर्म भी तू, जीवन का हर एक सत्य भी तू, जीवन का हर एक सत्य भी तू, हर धड़कन में जो बसती रहे, हर धड़कन में जो बसती रहे, माँ मेरी पहचान है तू, हर धड़कन में जो बसती रहे, माँ मेरी पहचान है तू, हर राह में जब अंधेरा बन जाए, तू ही दीपक बन मुस्काए, गिरते कदमों को थामे सदा, तू ही मुझे फिर से उठाए, तू ही मुझे फिर से उठाए, तेरे चरणों में शांति मिले, तेरे चरणों में शांति मिले, जैसे मिल जाए सारा जहां, तू ही मेरी पूजा, तू ही शक्ति, तू ही मेरा आसमां, तेरे बिना सब अधूरा लागे, हर खुशी भी फीकी सी, माँ तेरी ममता के आगे दुनिया सारी छोटी सी। मेरी अगली कविता है युद्ध। हाल ही में विश्व में जो उथल पुथल हो रही है, ईरान में जो युद्ध हुआ, तो मेरे मन में विचार आए, तो मैंने उस पर एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है युद्ध। बूढ़ा हो या जवान, सब करे मुझे परेशान, बूढ़ा हो या जवान, सब करे मुझे परेशान, और कहते हमें रोटी दे दो, यह है ईरान, और कहते हमें रोटी दे दो, यह है ईरान, देख लो दुनिया युद्ध का अंजाम, देख लो दुनिया युद्ध का अंजाम, किस मोड़ पर खड़ी है यह इंसानियत, किस मोड़ पर खड़ी है यह इंसानियत, बूढ़े जवान और बच्चे सब कहीं खो गए, बूढ़े जवान और बच्चे सब कहीं खो गए, यह सब मलबे के ढेर बता रहे हैं, यह सब मलबे के ढेर बता रहे हैं, कोई गुनाह हो गया इन बंदों से, जो अब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्या संभल जाएगा हर इंसान इन हालातों को देखकर, क्या संभल जाएगा हर इंसान इन हालातों को देखकर, यह अपनी आंखों का पानी सुखा देगा, यह अपनी आंखों का पानी सुखा देगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सच झूठ। मेरे बारे में जानकर क्या करोगे, जब खुद से मिलने का हौसला नहीं, जब खुद से मिलने का हौसला नहीं, सवाल मुझसे पूछते हो बार बार, मगर अपने आईने से नजर मिलती नहीं, मगर अपने आईने से नजर मिलती

पूछती नहीं, अपने अनकहे सवालों के जवाब ढूंढना ही सही, अपने अनकहे सवालों के जवाब ढूंढना ही सही, मगर चेहरे बदलकर सच छुपाना कहाँ है सही, मगर चेहरे बदलकर सच छुपाना कहाँ है सही। यहाँ हर शख्स कहता है उसे किसी से शिकवा नहीं, इस दुनिया में रंग देखने को बहुत हैं कुछ, इस दुनिया में रंग देखने को बहुत हैं, फिर भी अक्सर नजरें धोखा खा जाती हैं, फिर भी अक्सर नजरें धोखा खा जाती हैं। सच सामने हो तो झूठ झुक जाता है, फिर भी झूठ की राहें आसान नजर आती हैं, फिर भी झूठ की राहें आसान नजर आती हैं। कहते हैं झूठ बोलना बुरा नहीं, कहते हैं झूठ बोलना बुरा नहीं, क्योंकि सच सुनने का सलीका नहीं, क्योंकि सच सुनने का सलीका नहीं। सब चाहते हैं पल दो पल की खुशियां, सब चाहते हैं पल दो पल की खुशियां, मगर दुख ढूंढ ही लेता है अपनी घड़ी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अभिव्यक्ति। मनोवृत्ति से छूट नहीं पाया, मनोवृत्ति से छूट नहीं पाया कि अभिव्यक्ति ने जकड़ लिया, कि अभिव्यक्ति ने जकड़ लिया। कार्य से छूट नहीं पाया, कार्य से छूट नहीं पाया कि कार्यशैली ने जकड़ लिया, कि कार्यशैली ने जकड़ लिया। चलना सीख ही रहा था, चलना सीख ही रहा था कि मंजिलों ने आईना दिखा दिया, चलना सीख ही रहा था कि मंजिलों ने आईना दिखा दिया। सत्य सुनना किसे अच्छा लगता है, झूठ ने मुझे मौन रहना सिखा दिया, झूठ ने मुझे मौन रहना सिखा दिया। मेरा धर्म क्या है ये तुम ही निर्धारण कर लो, क्योंकि मेरा जन्म हिंदी में मानव मनुज, उर्दू में बंदा शख्स, अरबी में आदमी इंसान बसर के रूप में हुआ है, क्योंकि मेरा जन्म हिंदी में मानव मनुज, उर्दू में बंदा शख्स, अरबी में आदमी इंसान बसर के रूप में हुआ है। उस युग में हुआ है, उस युग में हुआ है जब सब लोग अभिव्यक्ति की आजादी मांग रहे हैं, उस युग में हुआ है जब लोग अभिव्यक्ति की आजादी मांग रहे हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पर्दे के पीछे। ये लिवाज कैसा है, ये लिवाज कैसा है जिसे ओढ़कर अब सच को दबाया जा रहा है, ये लिवाज कैसा है जिसे ओढ़कर अब सच को दबाया जा रहा है। चेहरों पर परते मुस्कान की, चेहरों पर परते मुस्कान की, भीतर सब कुछ छुपाया जा रहा है, भीतर सब कुछ छुपाया जा रहा है। शब्दों में मिठास का दिखावा है, शब्दों में मिठास का दिखावा है, इरादों में जहर मिलाया जा रहा है, इरादों में जहर मिलाया जा रहा है। जो दिखता है वो सच नहीं, जो दिखता है वो सच नहीं, हर सच को परे हटाया जा रहा है, हर सच को परे हटाया जा रहा है। ये लिवाज है कैसा आखिर, ये लिवाज है कैसा आखिर जिसे इंसान ही छुपाया जा रहा है, जिसे इंसान ही छुपाया जा रहा है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है इस जहां से। कैसे कहूं कि अब वो मुझसे दूर है, कैसे कहूं कि अब वो मुझसे दूर है, पास होने के लिए मैं मजबूर हूं, पास होने के लिए मैं मजबूर हूं। कैसे कहूं कि कोई तुझे याद नहीं करेगा, कैसे कहूं कि कोई तुझे याद नहीं करेगा, कैसे कहूं कि मैं मजबूर हूं, कैसे कहूं कि मैं मजबूर हूं। क्यों गिनाऊं मैं दुनिया की खामियां, क्यों गिनाऊं मैं दुनिया की खामियां, क्या मेरा होना ना होना, क्या मेरा होना ना होना दुनिया के लिए काफी नहीं। नफरत कर बैठा मैं अपने आप से, नफरत कर बैठा मैं अपने आप से, दुनिया सोचती रही, दुनिया सोचती हुई, अच्छा हुआ बलट टली इस जहान से, अच्छा हुआ बलट टली इस जहान से। मेरी एक अगली कविता है जिसका शीर्षक है आजाद। आजाद हूं पर आजाद नहीं, आजाद हूं पर आजाद नहीं, देखा है मैंने बचपन से आजादी का महत्व, देखा है मैंने बचपन से आजादी का महत्व, जाना है मैंने यौवन से आजादी का महत्व, जाना है मैंने यौवन से आजादी का महत्व। आजाद हूं पर आजाद नहीं, आजाद हूं पर आजाद नहीं, आजाद होना मेरे बस में नहीं, आजाद होना मेरे बस में नहीं, आजाद कराना मेरे बस में नहीं। आजाद कौन है यहाँ, आजाद कौन है यहाँ, आजाद होने की तलाश में भटक रहे यहाँ वहाँ, भटक रहे यहाँ वहाँ, आजाद वो है

0: यहाँ जो मुक्त हो गया, जो मुक्त हो गया इस अनंत संसार से, इस अनंत संसार से। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: श्रोताओं, आज के साहित्य सरिता कार्यक्रम में अभी आप युवा कवि जगदीप ध्रुवे की रचना सुन रहे थे। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए रचनाकार के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य सरिता, जिसके अंतर्गत आज आपने सुनी बैतूल के जाने माने कवि जगदीश ध्रुवे जी से श्री प्रवीण चौरे जी की बातचीत। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है।

हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर

0: राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी मिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एक्साइज स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग

तक 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

तू बदन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शकील बदायनी का लिखा गीत था और रवि का संगीत था। विविध भारती से समय सुन रहे हैं आप, आपके लिए कार्यक्रम।

के लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो। फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरी जयपुरी की रचना शंकर जयकिशन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं कन्यादान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था प्यार किए जा।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाली उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात होले होले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: लोक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा,
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे। छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग
0: बुझता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

कश्मीर की एक कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इस गीत को लिखा था, ओपी नायर ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। मोहम्मद रफी की आवाज में लीजिए एक गाना सुनिए। राजा मौली अली खान ने बोल लिखे हैं और मदन मोहन ने तर्ज बनाई है। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: मोहम्मद रफी के गायस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शब्द सूरत तो आप जानते हैं, एन वैंसी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलान, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बालों की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है। जॉनी से डरते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है। जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है। मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है। क्या तकते हो? जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान ली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जो जीवन बैठता है वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है। जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था, जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी। इसमें मैं तो भाग्य हूं, लेकिन तुम भी आ गए। तुम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मारना।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जाम जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और

0: अन्य फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
1: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।

0: दोस्तों, सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस जबान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें। उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बम्बई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो न बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएम मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो तो हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद जब मेरे कॉलेज की छुट्टी में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंग रूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थी। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डबल्स मास्टर विट्ठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वारे जमाने, कहानी किसी सीन के रहस्य चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखने में पाओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कोई बोल दीजिए बरखुरदार। वाह, क्या समय था। किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीत कर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते हुए आवाज को पुरगत बनाकर आगाशे साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे दिन हवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाई आंख जो सब हाजरों को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टर में रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कौन दोस्तों,

0: छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल।
1: इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत सॉन्ग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत में दूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कुल 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना है भाई होशियार रहना। बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नर्क में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेला पर महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटा इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बनाना हूँ, आइए आप भी मेरे साथ बारात की में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।
2: हो चले शंकर बाबा होके बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार, चले बोले बाबा।

भूत को लेकर सारे बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदल गले में विषधर को लटकाए, अपनी पार्वती को रे

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये है कि रोज टीवी मैं खोल लू, दरवाजा भी मैं पका।
1: वो नामालूम कौन सी कट्टी का घी खाता है, दो हाथ में पंजे ढीले कर दिए। कम बक देसी मैन जंगली।

0: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
1: और देखो ये गांव में तुम्हारी ये छेड़छाड़ नहीं चली।
0: अरे चुप रे जंगली वाला, कहीं का चल, एक दो डोल पानी डोला, दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
1: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई, कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
0: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
1: तो अरे वही बसंती।
0: अच्छा, और तुम्हारी माँ छुट्टिया?
1: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
2: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी उसूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहते हैं, तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं हो।

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों बात बाहर ना जाए, मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हाँ मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट यानी मुख्तफा जबान में सी ए, और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए वरना।
2: अरे तू

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
1: आज के फनकार।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी पसंद।

समीर के बोलों को संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, फिल्म का नाम गुलाम। कार्यक्रम मेरी पसंद, आकाशवाणी का बैतूल केंद्र।

0: सपने मूवी के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मेरी पसंद यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है सरकार के 12वें वर्ष पर आधारित आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
1: दिस इज आकाशवाणी इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के। नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियाज न्यू एंटी टेरर डॉक्ट्राइन। इंटरव्यूअर इज डॉक्टर श्रीराम चौलिया।
2: Namaskar and welcome. This is a special episode on completion of 12 years of Prime Minister Narendra Modi's momentous rule. Since 2014, we have seen incredible changes in this country and its role in the world. The promises that were made have been kept, and we are now chasing new dreams and goals and ambitions. This particular episode is focused on India's journey in the world, our foreign policy, the major accomplishments.

0: This time, as always, we believe, Prime Minister, yourself, you've played very important roles in this, and this is the era of transformative change, and people are going to continue to support your endeavors as you navigate the ship of the state through difficult times in the world. Thank you, sir.
1: Thank you. Great pleasure.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs, on India's new anti-terror doctrine. Interviewer was Dr. Sriram Chaulia. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
4: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
5: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
3: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी जीएमएसएस जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
4: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved 2 major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. Indian Railways has taken a major step to enhance passenger safety by launching nationwide fire safety audits at railway stations. The initiative aims to assess existing fire safety systems and identify areas requiring improvement to enhance passenger safety and protect railway assets. The Ministry of Railways